इमेजिंग वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हुए हैं। आज के इस सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत

0: को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं अभी आप भक्ति रचनाएं सुन रहे थे जिन्हें स्वर दिए थे लता मंगेशकर, चंद्रो आत्मा, हेमंती शुक्ला और साथियों ने। इसके साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:25 हुए हैं। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध के विचार।
1: भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे, प्रेम, सहानुभूति और दया की साक्षात मूर्ति थे। उनका उपदेश था कि जन्म मरण और सुख दुख जन्म से उत्पन्न होते हैं। जन्म अथवा आवागमन ही इनका मुख्य कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें जमीन में फैली होती हैं, उसी प्रकार जन्म मरण, रोग या शोक का मूल आवागमन है। ज्ञान के अभाव में पूरी दुनिया दुखों का घर बन जाती है। मूर्ख मनुष्य अपने अज्ञान से ऐसी वस्तुओं को बंधा करता है जो बिल्कुल सारहीन और व्यर्थ होती हैं और जो उसकी आत्मा को भुलावे में डाल देती हैं। ऐसी असत्य वस्तुओं को अपने चारों ओर चमक दमक के साथ देखकर उसके मन में तृष्णा और ज्वाला जगती है जो प्राणी मात्र को भ्रम के जाल में डालती है। इसके विपरीत जब झूठी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो भ्रम और अज्ञान का सारा अंधकार दूर हो जाता है। उसके स्थान पर ज्ञान, शांति और वास्तविक सुख का सूर्य उदय होता है। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को दिए गए उपदेशों में कहा था कि जीवन के 2 प्रतिवाद हैं। एक है भोग विलास का जीवन जिसमें मनुष्य इच्छाओं और तृष्णाओं में फंसा रहता है। सांसारिक मोह माया में फंसा वो शारीरिक सुख साधना की चिंता में ही लगा रहता है। ये मार्ग झूठा और असत्य है। यही नाश का मार्ग है। दूसरा मार्ग आत्मनिग्रह का मार्ग है। शरीर को नाना प्रकार के कष्ट देने का मार्ग भी व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है जिससे शाश्वत सुख और शांति प्राप्त हो सकती है।

0: इस मध्य मार्ग को ही अष्टांग मार्ग कहा गया है। इस मध्य मार्ग के 8 श्रेष्ठ अंग हैं। पहला मार्ग सम्यक सृष्टि कहलाता है। ये दृष्टि रखना कि जीवन में दुख है, दुख अकारण नहीं है, दुख दूर किए जा सकते हैं, दुखों को दूर करने के उपाय भी हैं। अर्थात बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य कहे हैं उनमें अटल विश्वास रखना। दूसरा सम्यक संकल्प है, जो कार्य करने योग्य नहीं है उसे नहीं करने का संकल्प, अद्रोह संबंधी संकल्प, अहिंसा संबंधी संकल्प इत्यादि। तीसरा सम्यक वचन है, झूठ बोलने से दूर रहना, चुगली करने से बचना, कड़ी बात कहने से बचना तथा व्यर्थ की बातों में भाग लेने से बचना। चौथा मार्ग सम्यक कर्मांत का है। इसके अंतर्गत प्राणी हिंसा नहीं करना, जो नहीं दिया गया है उसे नहीं लेना, दुराचार से बचना और भोग के अतिचार से दूर रहना। पांचवा सम्यक आजीव है। गलत रोजगार से अगर रोजी चलती हो तो उसे छोड़कर ऐसे रोजगार में लगना जिससे धर्म नहीं बिगड़ता हो। छठा मार्ग सम्यक व्यवस्था का है। दुर्व्यसन और कुटेव को छोड़ने की कोशिश करना, मन में पाप के भाव जगते हों तो उन्हें दबाने का प्रयत्न करना, मन में जो अच्छे विचार पैदा हों उन्हें बढ़ाने की चेष्टा करना, अपने व्यक्तित्व को निर्मल विमल और पूर्ण बनाने की कोशिश करते रहना। सातवां सम्यक स्मृति का मार्ग है। शरीर में बुढ़ापे, रोग और पाप के बीज हैं, इसका ध्यान रखना और क्षण क्षण भीतर से जागरूक रहकर वासना का दलन और ज्ञान का विकास करना। आठवां और अंतिम मार्ग सम्यक समाधि है। 4 प्रकार के ध्यान, जिनमें वितर्क और विचार से मन को भावों को सुलझाया जाता है, शांति और एकाग्रता से अपने आप को जानने की कोशिश की जाती है, सुख तथा दुख दोनों से अलिप्त रहने की भावना का विकास किया जाता है। एक बार महात्मा बुद्ध गया के समीप के उपवन में डेरा डाले हुए थे। बहुत से लोग उनके उपदेश सुनने आए। अचानक दूर राजगृह की घाटी के पार सारे जंगल को आग की लपटों ने घेर लिया। सभी शिष्यों ने इस दृश्य को देखा। इस घटना पर भगवान बुद्ध ने लोगों को महान अग्नि शिक्षा दी। भाइयों, हमारे चारों ओर, हमारे बाहर और भीतर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अणु परमाणु आग से जल रहे हैं। तृष्णा और अहंकार को अग्नि जला रही है, सभी दुखों से जल रहे हैं। ज्यों ज्यों हम सुखों की चिंता करते हैं त्यों त्यों अग्नि अधिक भड़कती है और जलन तीव्र होती है। सभी वस्तुएं परिवर्तन की भट्टी में जल रही हैं। समय अपने आघातों से उन्हें अपने अनुकूल ढाल रहा है। जो धर्मात्मा लोग किसी की हिंसा नहीं करते, शरीर की वृत्तियों का संयम कर पापों से बचे रहते हैं, वे उस निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भगवान गौतम बुद्ध के विचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में 6:45 पर कार्यक्रम खेती की बातें में आप सुनेंगे संजय शर्मा की वार्ता कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग विषय पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर सुनेगा रक्त का महत्व विषय पर वार्ता। वार्ताकार रहेंगे डॉक्टर राकेश नारायण गुप्ता।

आसपास की सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास सुना जा सकेगा प्रातः 7:31 पर। 9:25 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा में आप सुनेंगे सदाचार से संबंधित गांधी जी के विचार। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुन सकेंगे अंजू शर्मा के गाए कुछ लोकगीत।

संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से सरोद पर बजाए मल्हार के प्रकार। 11 बजे कार्यक्रम आज के कलाकार में सुनेगा चरित्र अभिनेता आलोक नाथ के विषय में। सूचना पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर आज का विषय रहेगा जल स्त्रोतों में बढ़ता प्लास्टिक कचरा मत्स्य पालन दिवस के उपलक्ष्य में। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुना जा सकेगा दोपहर 12 बजे। दोपहर 1:15 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। कार्यक्रम में मत्स्य पालन समृद्धि की नई लहर विषय पर की जाएगी चर्चा। इसी के साथ आप सुन सकेंगे कमलजीत कौर से काव्य पाठ एक कोशिश।

दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा सलीम हसन चिश्ती कव्वाल और साथियों की गाई कुछ कव्वालियां। दोपहर कार्यक्रम 2:30 पर आप सुन सकेंगे उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित रामकृष्ण का धुन मिश्र पहाड़ी में क्लैरिनेट वादन। इसी के साथ सुना जा सकेगा पंडित निखिल बनर्जी से धुन मांड में सितार वादन।

दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, जिसमें आप सुन सकेंगे सैयद मोहम्मद अकील से मकाला गंगा जमुनी तहजीब के अलमदार निदा फाजली, कलामी शायर के तहत शिरकत करेंगे मोहम्मद इश्तियाक आलम, अपना अफसाना रोशन चिराग पेश करेंगे अफसाना निगार महमूदा कुरैशी।

श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे, जिसमें 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा मत्स्य संपदा योजना। इसी के साथ सुनी जा सकेगी भारत का जनसांख्यिक परिदृश्य विषय पर वार्ता। वार्ताकार रहेंगे श्रीजल नगाइच। ग्रामीण लोक कार्यक्रम में शाम 6 बजे सुनेगा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर चर्चा। और इसी के साथ आप सुन सकेंगे आधुनिक कृषि यंत्रों का महत्व विषय पर डॉ. दिनेश मिश्रा की वार्ता। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का आज का संगीतबद्ध प्रसंग। गायक कलाकार हैं मिताली सिंह और संगीत है सतीश भाटिया का।

बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई

देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

0: श्रोता, श्री रामचरित मानस गान में अभी आप सुन रहे थे आज का एपिसोड, और गायक कलाकार थी मिताली सिंह और संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए सुनते हैं कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग विषय पर वार्ताकार संजय शर्मा की वार्ता।
1: किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं अनुदान पर दी जा रही हैं? नहीं, मैं आज आप लोगों के सामने बताता हूं। सबसे पहले है सोलर कुकर। यह धूप से खाना बनाने का एक आधुनिक साधन है। इसके द्वारा एक साथ 4 प्रकार का खाना तैयार किया जा सकता है। विभिन्न परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि सोलर कुकर से बना भोजन अन्य ईंधन की सहायता से बने भोजन से अधिक पौष्टिक होता है। इसमें छोले, राजमा, दाल, केक, गोश्त, चिकन, खीर, बिस्किट, खिचड़ी आदि पकाई जा सकती है। यह भीगी और गीली वस्तुएं जैसे जड़ी बूटियों को सुखाने के काम में भी आता है। सादा सोलर कुकर की कीमत 1500 रुपये है। दूसरे तरह का है विद्युत बैकअप वाला सोलर कुकर। इसमें रात के समय तथा बरसात के दिनों में धूप ना होने की दशा में

बहुत ही कम बिजली के खर्च पर खाना बनाता है। इसमें ना तो खाना जलता है और ना ही कोई गंध या धुआं होता है। इससे घर तथा वातावरण शुद्ध रहता है। बिजली की व्यवस्था वाले सोलर कुकर की कीमत मात्र 2400 रुपये है। तीसरा है डिश टाइप सोलर कुकर। इसमें 10 से 15 व्यक्तियों का खाना 30 से 40 मिनट में तैयार किया जा सकता है। तापमान अधिक होने के कारण खाना बनाने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए चश्मा, दस्ताने आदि भी फ्री में मिलते हैं। घरों, ढाबों, कैंटीनों, होटल के लिए यह बहुत लाभकारी है। इसकी कीमत 5000 रुपये है, लेकिन सरकार द्वारा इसमें आधा अर्थात 2500 रुपये का अनुदान है। इसी प्रकार एक सूर्य की रोशनी से पानी गर्म करने वाला संयंत्र है, जिसका नाम है सोलर वाटर हीटर। यह संयंत्र पानी गर्म करने के काम आता है। इसकी कीमत क्षमता के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे 100 लीटर क्षमता वाले सोलर वाटर हीटर की कीमत लगभग 20,000 है। इस पर फिलहाल कोई अनुदान नहीं है, लेकिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी है। नर्सिंग होम के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। इसमें बिजली की बचत, आयकर की छूट तथा बड़े क्षमता के संयंत्रों पर लोन आदि की व्यवस्था बैंक से की जाती है। इसमें लाभार्थी संस्था को 25% प्रोजेक्ट कास्ट वहन करना पड़ती है। लोन का 10 वर्ष बाद फिर पे बैक पीरियड है। आवेदन के साथ 7500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, भी संलग्न करना पड़ता है। वर्तमान में 100 लीटर से 10,000 लीटर क्षमता के संयंत्र उपलब्ध हैं, जिनकी लागत ₹20,000 से 1 लाख तक है। इसी प्रकार एक बहुत उपयोगी संयंत्र है सोलर घरेलू लाइट। यह सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करने का संयंत्र है। यह जनपद के सभी ग्रामों के लोगों के लिए, जो वर्तमान में अनुदान के बाद मात्र 5725 रुपये में उपलब्ध है। इससे लाभार्थी 2 ट्यूब रॉड और 1 पोर्टेबल TV भी चला सके। फिर है सोलर लालटेन। यह सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करने का संयंत्र है। यह सभी प्रकार के लाभार्थियों को देय है, जो वर्तमान में अनुदान के बाद मात्र 1750 रुपये में दी जा रही है। सोलर लालटेन चार्जिंग स्टेशन एक ऐसी रोजगार परक योजना है, जिसमें 30 लालटेनों की एक चार्जिंग सेट दिया जाता है। उसमें सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाते हैं और अविद्युत क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति, जो विवाह, शादी आदि के लिए प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, अपने व्यवसाय में इसको शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अनुदान व लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना सभी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए है। फिर आता है सोलर पंप। दिनों दिन बिजली की परेशानी को देखते हुए सौर ऊर्जा के पंपों की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम जहाँ पेयजल की समस्या है, तथा ग्रामवासी लगभग 22,000 रुपये पानी की टंकी आदि के निर्माण के लिए खर्च करना चाहते हैं, वहाँ यह योजना क्रियान्वित की जा सकती है। इसमें अम्बेडकर ग्राम व गांधी ग्रामों को प्राथमिकता दी जाती है। 1 किलोवाट पंप की लागत ₹3,20,000 है। वर्तमान में अनुदान इस पर 1,20,000 है। एरेडा द्वारा लोन भी दिया जा रहा है, जो ₹80,000 है। इसमें करीब 3 इंच डिलीवरी पर एक दिन में 1 एकड़ पानी से सिंचाई की जा सकती है। कुल 70,000 लीटर भूमिगत जल भी ये पेयजल के रूप में उपलब्ध कराता है। फिर आता है बायोगैस संयंत्र। 10 सीट से लेकर 30 सीट लेटरिन कॉम्प्लेक्स, बाथरूम, यूरिनल्स के साथ इसमें 10 से 35 घन मीटर क्षमता के बायोगैस के साथ साथ 500 से 3500 व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे उत्पन्न गैस का उपयोग पंप सेट चलाकर पानी निकालने या जनरेटर चलाकर बिजली की व्यवस्था के रूप में किया जाता है। नगर पालिकाएँ या ऐसी संस्थाएँ जो लागत का 40 से 50% लाभार्थी अंशदान वहन करने के लिए तैयार हैं, वहाँ इस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है। लाभार्थियों को ₹50 सिक्योरिटी व ₹30 प्रति मास प्रति परिवार मेंटेनेंस के लिए जमा करना पड़ता है।

आवश्यकता पड़ने पर आटा चक्की की स्थापना भी की जाती है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंडों का चयन किया जाता है, उसमें भारत सरकार से अनुदान के आधार पर कैरोसिन लालटेन, प्रेशर कुकर, सोलर लाइट, सोलर लालटेन और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाती है। एक आता है पवन चक्की। हवा की गति 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होने पर पवन चक्की से ऊर्जा पैदा की जाती है, जिसका उपयोग भूमिगत जल बोरिंग करके पेयजल के रूप में और सिंचाई के रूप में किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिनों दिन एक प्रकार की समस्या आती जा रही है कि वहाँ कूड़े कचरे का निपटान सही नहीं हो पा रहा। इसके लिए भारत सरकार ने गैसीफायर की एक स्थापना करने की योजना बनाई है। गैसीफायर संयंत्र

0: दिनों दिन एक प्रकार की समस्या आती जा रही है कि वहाँ कूड़े कचरे का निपटान सही नहीं हो पा रहा। इसके लिए भारत सरकार ने गैसीफायर की एक स्थापना करने की योजना बनाई है। गैसीफायर संयंत्र धान की भूसी, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों, बुरादों, घास फूस जैसे बायोमास को अत्यंत ज्वलनशील गैस में परिवर्तित करने वाला संयंत्र है। इसमें उत्पन्न होने वाली गैस को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। 1 किलो धान की भूसी या लकड़ी से 2.5 से 3 न्यूटन स्क्वायर मीटर गैस उत्पन्न होती है, जिससे 2,500 से 3,000 किलो कैलोरी ताप उत्पन्न होता है। यह डीजल इंजन में डीजल की 65 से 85% बचत करता है। भट्टी या चूल्हों में जिसमें फर्नेस ऑयल, डीजल इत्यादि का प्रयोग हो रहा है, यह गैस अकेले या वर्तमान ईंधन के साथ प्रयोग की जा सकती है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं फैलता। इसमें 900 डिग्री टेम्परेचर से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मिलता है। यह रोलिंग मिल, बॉयलर, ब्रेकरी, ईंट उद्योग के लिए, होटलों, कैंटीन और रेस्टोरेंट में अत्यंत तो उपयोगी है। इसमें भारत सरकार तथा नेडा विभाग द्वारा मान अनुदान देय है। इनकम टैक्स में भी छूट एवं बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग विषय पर वार्ताकार संजय शर्मा की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्व गमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान संबोधयन प्रधानमंत्री न्यगादीत

0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रान्तिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमाप्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिकरीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासङ्गिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री

0: अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. India and Australia have adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart, Anthony Albanese, during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne yesterday. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: लेटर ब्रीफिंग द मीडिया, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a short-term, long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: As Prime

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 7:10 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रक्त का महत्व विषय पर डॉक्टर राकेश नारायण गुप्ता की वार्ता।
1: रक्त हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जिस प्रकार ट्रक अथवा मालगाड़ी सामान को देश के कोने कोने तक ले जाते हैं और लाते हैं, उसी प्रकार रक्त भी खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विषैले पदार्थ और हार्मोन्स जहां उनकी ज़रूरत होती है पहुंचा देते हैं। रक्त को हर अंग तक पहुंचना जरूरी है, अन्यथा वो अंग 5-10 मिनट में मृत हो जाएगा। जैसे दिमाग में जिस हिस्से को खून न मिले वो हिस्सा मृत हो जाता है और लकवा की शिकायत हो जाती है। इसी प्रकार दिल की मांसपेशी को रक्त न मिले तो हार्ट अटैक होने लगता है। सुरक्षा प्रणाली के तहत रक्त के अंदर सफ़ेद कण कीटाणुओं से निरंतर लड़ते रहते हैं और रोगों से मुक्त रखते हैं। इस जगह पर यह कहना उचित समझता हूँ कि मवाद पस क्या है। ये हमारे खून के सफ़ेद कणों का ढेर है जो रोग के कीटाणुओं से लड़कर और अपने अंदर समेट कर स्वयं भी मर गए और कीटाणुओं को भी मारकर एक जगह इकट्ठे हो गए। पस का रंग सफ़ेद, पीला, हरा, काला क्यों दिखता है? इसका कारण यह है कि जैसा कीटाणुओं का रंग होगा वैसा ही पस का रंग होगा। सफ़ेद, पीला, हरा पस ग्राम पॉजिटिव कीटाणु बैक्टीरिया के द्वारा बनता है और काला बदबूदार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द्वारा बनता है। इस मवाद को देखकर डॉक्टर अपनी एंटीबायोटिक्स का चयन करता है। सुरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडीज प्रतिरोध शक्ति का भी जिक्र होना जरूरी है। ये भी कीटाणुओं और जीवाणुओं से लड़ती है। इसी प्रतिरोध

0: शक्ति को हम टीकों से बढ़ाते हैं, हर बीमारी की अलग अलग एंटीबॉडीज होती है, ग्रुप्स, खून सब मनुष्य का एक जैसा नहीं होता, इसमें ग्रुप होते हैं, जैसे AB, AB O, इसके अलावा RH पॉजिटिव RH नेगेटिव खून होते हैं। एक ग्रुप का खून दूसरे ग्रुप में नहीं चढ़ाया जा सकता, खून को मैच एंड क्रॉस मैच करना आवश्यक होता है, अन्यथा मृत्यु हो सकती है। खून की आवश्यकता ऑपरेशन के समय, खून की कमी के समय, जिसे सीवियर एनीमिया के कहते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, हीमोफीलिया में, ल्यूकीमिया में इत्यादि में हो सकती है। प्लेटलेट काउंट कम होने पर भी ये चढ़ाया जा सकता है। कभी कभी खून के अवयव जैसे RBC, सीरम, एल्ब्यूमिन, प्लेटलेट्स खून से अलग करके भी चढ़ाए जाते हैं। सेल्फ प्रोडक्शन खून में एक और तासीर है कि स्वयं ही जख्म से कुछ मिनटों में बहना बंद हो जाता है। खून जमकर थक्का क्लॉट बनाता है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट्स आपस में मिलकर इस कार्य को अंजाम देते हैं और खून बहना बंद हो जाता है। खून की टेस्टिंग से बहुत सारी बीमारियों की पहचान की जा सकती है, तकरीबन सब बीमारियों की जांच हैं। इसके अलावा विभिन्न अंगों की सक्रियता की भी जांचें होती हैं। जांच इतनी सारी हैं कि सब कराना मुमकिन नहीं होता, केवल वही जांचें जो डॉक्टर चाहे वही कराता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राकेश नारायण गुप्ता की वार्ता, विषय था रक्त का महत्व। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, अब प्रस्तुत है देशगान।

0: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है सरकार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज, 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट किए गए सीज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार।

0: विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
1: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को

0: धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
1: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए उनके परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए। साथ ही पुलिस कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
2: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का CEO नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
1: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले VIP पास की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। विशेष पास की नई रेफरेंस ID अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं, लेकिन नए पास अब नई रेफरेंस ID जारी होने के बाद ही बन सकेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
3: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावित ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति आज से 15 जुलाई तक लखनऊ दौरे पर रहेगी। एक रिपोर्ट।
4: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। यह समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमिट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है।
5: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाए।
1: प्रदेश के कई जिलों

0: में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ जिलों में भारी वर्षा के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कल लखनऊ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, हापुड़, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और बस्ती सहित कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश और जलभराव के चलते संभल, गाजियाबाद, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। उधर अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़ने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीलीभीत जिले में कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के बहाव क्षेत्र में जलभराव से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए वहां बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कल तक के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: वेस्ट यूपी में हैवी टू वेरी हैवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: सोनभद्र जिले के पीपरी थाना क्षेत्र में मड़िया गांव के पास कल शाम एक ट्रक की चपेट में आ जाने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीडा के रूप में विकसित कर रही है सरकार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज। 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट किए गए सीज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार।

15 तक आरटीआई के जरिए मिलेगी ओएमआर शीट। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र सोमवार से आरटीआई के माध्यम से ओएमआर शीट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अप्रैल मई में आयोजित परीक्षाओं के घोषित परिणाम वाले छात्र 15 जुलाई तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षण के लिए आवेदन आज तक। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलिट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल ट्रिपल सी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई यानी कि आज तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आज के बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे। नगर निगम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अब पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। सामान्य आवेदन शुल्क 2 रूपये से बढ़ाकर 20 रूपये, विलम्ब या विशेष आवेदन शुल्क 5 रूपये से 50 और 1 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड का शुल्क 10 रूपये से 100 कर दिया गया है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1454 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है। पात्र व्यक्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में प्रवेश शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज स्थित इग्नू केंद्र पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम संचालित हैं। अधिक जानकारी के लिए केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

ताजनगरी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। ताजनगरी में मानसून की बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को 24 घंटे में 98.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो वर्ष 2019 के बाद एक दिन में हुई सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले 5 जुलाई 2019 को 109.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वर्ष 2022 में 10 जुलाई को 93.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इधर शुक्रवार को भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी दिन भर बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मानसून की सक्रियता के चलते आगरा में लगातार दूसरे दिन बारिश हुई। इस दौरान बरसात से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। लगातार झमाझम बारिश होने से नाले उफान पर रहे और सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। इधर ग्रामीण क्षेत्र में निचले स्तर के खेतों में भी पानी भर गया। एक ओर जहां झमाझम बारिश होने से मौसम सर्द होने से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जल भराव यातायात बाधित होने से समस्याएं बढ़ गईं। मौसम विभाग के अनुसार 2019 के बाद पहली बार 24 घंटे में वर्षा 90 मिलीमीटर से अधिक दर्ज की गई है।

रोड कटिंग पर नगर निगम की रोक। वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ ही नगर निगम प्रशासन ने शहर में सड़क कटिंग और खुदाई कार्यों पर रोक लगा दी है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बरसात के दौरान नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रोड कटिंग की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का मानना है कि बारिश के दौरान सड़कों पर की गई खुदाई कटान से जल भराव, सड़क धंसने और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, जिससे जन धन की हानि हो सकती है। प्रभारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वर्षा ऋतु के दौरान शहर की सभी प्रमुख और आंतरिक सड़कों को सुरक्षित बनाए रखना प्राथमिकता है। ऐसे में किसी भी एजेंसी या विभाग को सड़क काटकर ऑप्टिकल फाइबर, पेयजल लाइन, सीवर लाइन, विद्युत केबल और अन्य भूमिगत सुविधाओं से संबंधित कार्य करने की अनुमति नहीं है।

श्रोताओं, अब खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। एक सूचना के अनुसार रवीना पुत्री मदनलाल, उम्र 18 वर्ष, निवासी मदनपुरा जाजौली, थाना फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिनांक 12 मई 2026 से लापता हैं। इनका कद 5 फुट, रंग सामान्य और चेहरा पतला है। इन्होंने काले रंग का सलवार सूट पहन रखा है। इस खोई हुई युवती के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना फतेहपुर सीकरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार प्रियंका पुत्री लक्ष्मण सिंह, आशीष विहार कॉलोनी, टेढ़ी बगिया, थाना ट्रांस जमुना, आगरा, दिनांक 15 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 35 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग सामान्य है। इन्होंने सलवार सूट पहन रखा है। इस खोई हुई महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना ट्रांस जमुना आगरा को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार करण कुमार, पिता पुरुषोत्तम सिंह, निवासी 31/287/40 नगला छिद्दा लंगड़ी की चौकी, आगरा, दिनांक 11 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 42 वर्ष और कद 5 फुट, रंग सांवला है, चेहरा गोल। इन्होंने काले रंग की पैंट और पैरों में जूता पहन रखे हैं। इस खोए हुए युवक के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना हरि पर्वत आगरा को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

सोलर बिजली उत्पादन में आगरा का 20% योगदान। उत्तर प्रदेश में अब कुल बिजली उत्पादन का करीब 6% हिस्सा सोलर प्लांटों से आ रहा है। प्रदेश में इन दिनों बिजली की मांग 32,147 मेगावाट पहुंच गई है। इसमें 1,888 मेगावाट बिजली सोलर ऊर्जा से मिल रही है। आगरा भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले में प्रतिदिन करीब 10 लाख यूनिट बिजली सोलर प्लांटों से तैयार हो रही है, जबकि दोनों डिस्कॉम के माध्यम से जिले की कुल दैनिक खपत करीब 48 लाख यूनिट है। यानी जिले की कुल बिजली खपत में सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 20% तक पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के दौरान उत्तर प्रदेश ने बिजली खपत के मामले में महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। आईआईटी के छात्रों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन 11 जुलाई से शुरू होगा। ये परीक्षा 8 अगस्त तक चलेगी। इसकी तैयारियां गुरुवार को बलकेश्वर स्थित आईटीआई में चलती रहीं। नोडल प्रधानाचार्य ने बताया कि सीबीटी की परीक्षा 3 केंद्रों पर होगी। परीक्षा 3 शिफ्टों में कराई जाएगी। परीक्षा राजकीय आईआईटी बलकेश्वर, फतेहाबाद और खेरागढ़ में संपन्न होगी। ये परीक्षा डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और परीक्षा परिषद लखनऊ की निगरानी में आयोजित होगी। जिला पंचायत विभाग 23 स्थानों पर लगाएगा 2500 पौधे। आगामी 12 जुलाई को जिला पंचायत विभाग द्वारा 23 स्थानों पर पौधरोपण किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति दी जाएगी। शमशाबाद में 8 स्थानों पर 900, बरौली अहीरबाद रेस्ट एरिया में 600, बिचपुरी की ग्राम पंचायत अंगूठी में 350, सैया ब्लॉक में 150, फतेहाबाद ब्लॉक में 150, एतमादपुर ब्लॉक में 100 और अचनेरा ब्लॉक में 2 अलग स्थानों पर 250 पौधे का रोपण किया जाएगा। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत

लीज समाप्त संपत्तियां नए सिरे से आवंटित होंगी। देश भर की छावनी में लीज पर दी गई संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की प्रस्तावित नई ड्राफ्ट पॉलिसी 2026 लागू होने के बाद जिन लीज और पट्टों की अवधि पूर्ण हो चुकी है उन्हें नए सिरे से आवंटित किया जाएगा। नई नीति के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर देश भर की छावनियों में कैंट कोड लीज और सीएलआर के अंतर्गत तमाम भूमि वर्षों पहले आवंटित की गई जिनमें से अधिकांश की लीज या पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है जिसे अभी तक पुराने आवंटी या विधिक कब्जा धारकों के

को छोड़कर देश भर की छावनियों में कैंट कोड लीज और सीएलआर के अंतर्गत तमाम भूमि वर्षों पहले आवंटित की गई, जिनमें से अधिकांश की लीज या पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसे अभी तक पुराने आवंटी या विधिक कब्जा धारकों के नाम पर वर्ष दर वर्ष एमओडी पॉलिसी 2017 के तहत बढ़ाया जा रहा था। अब सरकार ने ऐसी सभी समाप्त हुई लीजों के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है, जिसे सरकार जल्द लागू कर सकती है।

विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाएंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इंडस्ट्री एक्सपर्ट छात्रों को शिक्षा देंगे। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत शिक्षण से इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भी जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय ने AEDP के तहत 7 नए रोजनापरक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 संस्थानों में संचालित होने वाले इन पाठ्यक्रमों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रभारी ने बताया कि छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर और अतिथि शिक्षकों का समूह तैयार किया जा रहा है, जो सप्ताह में 2 से 3 दिन आकर पढ़ाएंगे। इन्हीं सूचनाओं के साथ कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की अपनी रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में

0: हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी

0: सफाई की हाल।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
4: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
2: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत और

0: ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक।
0: फिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अग्री टू ऑपरेशनलाइज देयर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट, पेविंग द वे फॉर यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms seven-member committee to draft

0: से भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब एंथनी एल्बिनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदामात का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरक ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरक अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज दो समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरक उमंगों की अक्कासी होती है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मुआहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवियत मिलेगी।
2: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcome today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
0: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की तीन मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और उसके मौसर होने का मुजाहिरा हुआ।
1: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरक अकदार अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसत का अहम रोल है। वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया।
3: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। नामनिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: ये मीटिंग वाज़े इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को दोनों अहम पार्टियों की किस कदर तायीद हासिल है। स्ट्रेटजिक शराकतदारी में तआवुन पर इत्तेफाक करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा ने वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सच्चा दोस्त करार दिया और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की तायीद की। आला सतही मुलाकात के नतायज की हिमायत करते हुए अपोजिशन लीडर टेलर ने पुरअमन मकासद के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम फराहम करने और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसे तकनीकी तआवुन के इकदाम की भी तायीद

0: की। ये बातचीत सियासी तब्दीलियों के बावजूद सिक्योरिटी और तवानाई के अहम शोबों में मुसलसल और मुस्तहकम तआवुन को यकीनी बनाने की अक्कासी करती है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बिनीज के हमराह आज तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG गए। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी होती है।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: न्यूजीलैंड मतारिकी मना रहा है जो उम्मीद, यादों और नई शुरुआत की अलामत का माओरी नया साल है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दो दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं, जो पिछले तकरीबन 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। न्यूजीलैंड में नए साल और जनाब मोदी के दौरे से इस दिन की अहमियत और बढ़ गई है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: ऑकलैंड में वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वहां आबाद भारतीय अफराद के साथ साथ न्यूजीलैंड के कई लोग भी रिवायती माओरी इस्तकबाल किया ओरा मोदी के साथ उनका खैरमकदम करने के मुंतजिर हैं। न्यूजीलैंड के माली और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर खवातीन, नौजवान, कारोबारी रहनुमा, तालीमी और कम्युनिटी अरकान जनाब मोदी के इस दौरे को भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए दौर के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। उनका यह मानना है कि इससे तिजारत, तालीम, सरमायाकारी, खेलों और सकाफती तबादलों के शोबे में इश्तराक मजीद मुस्तहकम होगा। भारतीय बरादरी के अरकान का कहना है कि तकरीबन 40 साल बाद भारतीय वजीर आजम का यह दौरा उनके लिए बड़े फख्र और गहरे जज्बात का लम्हा है। न्यूजीलैंड के लोगों का भी कहना है कि वजीर आजम का यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने का मौका फराहम करता है। ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमबनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुज़श्ता दो साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शुबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एक महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ता और मुस्तैद मुआशरा मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। नई दिल्ली में सरहदी अजला के पुलिस सुपरिंटेंडेंट की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने यह बात कही। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क में दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए एक मुतहरिक तरीक़ाकार कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली हुकूमत ने सरहद पर बुनियादी ढांचे में साइंसी तौर पर 400% का इजाफा किया है। दरख्शा गांव प्रोग्राम का हवाला देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इस पहल के तहत माइग्रेशन को रोकने, रोजगार के मौके पैदा करने और हुकूमत की फलाही स्कीमों के 100% निफाज को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोर्ट का मुसवदा तैयार करने की खातिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। कल महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में उन्होंने ये ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि भारतीय आईन में सरकार की पॉलिसी से मुतालिक रहनुमा उसूल हर रियासत पर जोर देते हैं कि वो यकसां सिविल कोड के निफाज पर गौर करे। ये कमेटी आइंदा 6 माह के अंदर रियासती सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तराखंड में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कई जिलों के लिए शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। इस वार्निंग के तनाजुर में कई जिलों में आज स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद कर दिए गए हैं। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आयतुल्ला अली खामनाई इस साल 28 फरवरी को अमरीका इसराइल हमलों में हलाक हो गए थे, जिसके बाद मगरबी एशिया में बड़े पैमाने पर

0: महाजाराई का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को इस्लामी जमहूरिया का नया रहबर आला मुकर्रर किया गया था। फीफा आलमी कप में अमरीका के बॉस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई थीं, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 60वें मिनट और 66वें मिनट में उसके दो खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया। मर्दों के क्रिकेट में ब्रिस्टल में चौथे टी20 बैनुल अक्वामी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 158 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान सुरेश अय्यर ने 49 गेंदों में 80 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 2-2 विकेट हासिल किए। खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए तारीख रकम करेगी। ये लॉर्ड्स के मैदान पर खवातीन का पहला टेस्ट मैच होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस तारीखी मुकाबले को यादगार बनाना चाहेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
1: शुक्रिया अर्जुमंद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, तवानाई और साइबर सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद अहम मुआहदे। मगरबी एशिया कशीदगी के ताल्लुक से भारत के मौकिफ को भी उर्दू अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत का तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर। दिल्ली में भारत रूस वर्किंग कमेटी की 14वीं मीटिंग से मुतल्लिक खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर। नायब सदर जमहूरिया की जानिब से माहिगीरी को फरोग देने से मुतल्लिक कौमी प्रोग्राम के आगाज की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। और फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर को फिल्म दिल से में। गीत के बोल थे गुलजार की और संगीत था AR रहमान का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गीत, जिसे गाया था कुमार सानू और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना को सुरबद्ध किया था जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म परदेश से।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लखनऊ से जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का।
1: जून माह के मध्य में प्रयागराज के प्रभारी मंत्री जलशक्ति विभाग उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह जी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी एवं उपभोक्ता जागरूकता पर आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रमों का आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा महिला एवं गरीब कल्याण को समर्पित सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परिवर्तनकारी यात्रा का उत्सव है, जिसने गांव गरीब किसान को विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रयागराज के ऐतिहासिक और पवित्र संगम नोच पर एक भव्य सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग प्रयागराज के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और योग अभ्यास किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस बृहद कार्यक्रम में योग अभ्यासियों सहित 9,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास

0: अभ्यास कर स्वास्थ्य और कल्याण का संदेश दिया। इस अवसर पर योग और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का पवित्र माध्यम है। नियमित योग करने से न केवल हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विधा को अपना रही है जो हर भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। जून माह के तीसरे सप्ताह में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 140 नव दंपतियों का विवाह कार्यक्रम आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं संबंधित विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जून माह के अंतिम सप्ताह में मेजा ब्लॉक परिसर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम SCP का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख मेजा गायत्री देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। साथ ही स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों का मार्गदर्शन भी किया गया। इस माह के प्रथम सप्ताह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BVG रामजी योजना लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में BVG रामजी योजना के लॉन्चिंग के सभी को बधाई देते हुए कहा कि BVG रामजी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के पारिश्रमिक को 252 रुपए से बढ़ाकर न्यूनतम 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती थी, परंतु जी रामजी योजना के अंतर्गत इसे बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य के साथ साथ अब हमारा लक्ष्य विकसित ग्राम सभा बनाने का है। और जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,
1: देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, प्रयागराज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी मनरेगा के स्थान पर आए। विकसित भारत जी राम जी आने के बाद गांव का सर्वांगीण विकास होगा। गांव की जो सड़कें हैं, इंटरनल सड़कें हैं, वो भी बनेंगी, तालाब भी बनेंगे, भी सभी क्षेत्रों में यह बहुत ऐतिहासिक काम होगा।
0: जुलाई माह के प्रथम सप्ताह विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का उद्घाटन अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक डॉक्टर आशु पांडे एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संयुक्त रूप से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संचारी अभियान का संचालन दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 एवं दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की विशेष भूमिका के विषय में चर्चा की एवं दस्तक अभियान में स्टॉप डायरिया कैंपेन के अंतर्गत आशा एवं आंगनवाड़ियों के द्वारा घर घर पर जाकर डायरिया प्रभावित परिवारों को जिंक, ORS एवं क्लोरीन की गोली वितरण पर चर्चा की। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 3 रोजगार मेले का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 35 से अधिक कंपनियों के द्वारा हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार प्रदान किया गया। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले इसको लेकर क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क, ऑनलाइन पंजीकरण और पोर्टल पर जनपद में समय समय पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले की सूचना प्रदान की जा रही है। इस हफ्ते शुरू हुई हल्की बारिश और आसमान में छाए बादलों से भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मानसून की दस्तक से किसानों के चेहरे खिले हैं, साथ ही कृषि कार्यों में भी तेजी से कार्य शुरू हो गया है। खरीफ की प्रमुख फसल धान की खेती को लेकर कृषि विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
2: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का।
3: गाजियाबाद स्थित नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन यानी नेट्रा का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी इस अवसर पर मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। केंद्रीय मंत्री ने नेट्रा की 52 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख कर

0: हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में वस्त्र क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का वस्त्र उद्योग लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और भारत अब केवल अपनी जरूरतें ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की मांगें भी पूरी कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश में वस्त्र क्षेत्र में बड़े जुड़े हुए कई अनुसंधान संस्थान आधुनिक तकनीक और परीक्षण सुविधाओं के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे शोध और नवाचार को बढ़ावा मिला है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने अयोध्या का हालिया घटना पर कहा कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून अपना काम करेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में वाल्मीकि पार्क में आयोजित 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में भाग लिया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए स्वच्छ अभियान में उनके योगदान का महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विकास भवन पहुंचे जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दौरे के दौरान आयोजित किसान कार्यशाला में उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों से अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए किसानों को कंपोजिट खाद और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किसानों की कार्यशाला में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हम प्रदेश के किसानों से अपील करते हैं कि हम सबको प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। हमारे जो पुराने संसाधन थे उन पर हमें जाना है, हमें कंपोस्ट खाद का उपयोग मिलाना है।
0: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गाजियाबाद में जिला प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर गांधीनगर क्षेत्र में एक महिला को उसकी परसों पुरानी आवंटित दुकान का कब्जा वापस दिलाया गया। पीड़िता सुमन बत्रा ने सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की थी कि वर्ष 1992 में नगर पालिका से लीज पर मिली दुकान पर अवैध कब्जे कर लिया गया है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को खाली कराया और उसका कब्जा सुमन बत्रा तथा उसके परिवार को सौंप दिया। जिलाधिकारी रविंद्र मादर ने कहा कि अवैध कब्जों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है।
2: प्रमोद बत्रा जी मेरे पास आए थे और इनकी एक पीड़ा थी कि पिछले 28 वर्ष से के दुकान पे कब्जा किया हुआ था और वो कब्जा खाली नहीं कर रहा था। जनता दर्शन में मेरे पास आए थे, इन्होंने अपनी शिकायत मुझे बताई, तो हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की और जब ये पुख्ता हो गया कि सारे कागज इनके नाम पे, दुकान इनकी है, जिस दुकान को खाली करा लिया गया और इन्हें कब्जा वापस प्रदान कर दिया गया।
0: उन्होंने कहा कि सरकारी अथवा वैध रूप से आवंटित संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे के निकट स्थित करीब 250 बीघा सरकारी भूमि को जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
3: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। गांधी चर्चा में आइए सुनते हैं सदाचार से संबंधित गांधी जी के विचार।

प्रस्तुत हैं सदाचार के संबंध में गांधी जी के विचार। सदाचार के बिना अक्षर ज्ञान व्यर्थ है। कर्तव्य परायण रहिए और अशांति में भी शांति का अनुभव करना सीखिए। हमारा आनंद हमारे धर्म पालन में हो, काम की सफलता में अथवा संयोगों की

अनुकूलता में नहीं। मनुष्य तो रंक प्राणी है, वो राजा तो तभी बनता है जब अहंकार छोड़कर ईश्वर में समा जाता है। समुद्र से अलग हुई बूंद किसी के काम नहीं आती, लेकिन समुद्र में समा जाने से वो अपनी छाती पर इस बड़े जहाज का बोझ संभाल रही है। इसी तरह यदि हम आश्रम में समाना और उसके द्वारा दुनिया में अर्थात ईश्वर में समाना सीख लें तो पृथ्वी का भार उठाने वाले माने जाएं। किंतु तब तो मैं तू मिटकर वही रह जाता है। अच्छा ये है कि हम कोई काम हाथ में न लें, अगर लें तो करते हुए मर मिटें। जो ऐसी दृढ़ता से काम करता है भगवान उसकी सहायता करते ही हैं। कोई कैसा भी दुष्ट मनुष्य आप पर हमला करने आए तो आप आराम नाम लीजिए। बहुत से दुष्ट मनुष्य तो उसकी आवाज से ही भाग खड़े होंगे, लेकिन कदाचित ऐसा ना हो तो भी क्या हुआ, ऐसे समय हमें मर मिटना चाहिए। मनुष्य कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, हम मर जाएं पर उसके बलात्कार के वश न हो तो वह दुष्ट मनुष्य भी क्या कर सकेगा। संभव तो यह है कि मरने की पूरी तैयारी वाले पवित्र मनुष्य के सामने चाहे जैसा दुष्ट मनुष्य भी अपनी दुष्टता छोड़ देता है। अतएव सत्याग्रह दोहरा लाभदायक है। जो मनुष्य सत्याग्रह करता है उसका तो भला होता ही है, किंतु जिसके प्रति सत्याग्रह किया जाता है उसका भी उससे भला होता है। व्यापारी होकर कभी झूठ न बोलें अथवा झूठा आचरण न करें। विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। संसार में रहकर धन अथवा वस्तु का परिग्रह न करना कठिन है, फिर भी इस आदर्श को ध्यान में रखकर हद तो बांधनी चाहिए, जिससे जब वैराग्य उत्पन्न हो तो महात्याग भी किया जा सके। मनुष्य जो माफी मांगता है सो दूसरों के लिए नहीं अपने लिए। जो हमें सहज भाव से मिल जाए उसे तन्मयता से कर डालें तो गंगा ना है। यम नियमों के पालन से शरीर का बिगड़ना असंभव मानो, निश्चय समझो कि जिस भूमिका में हम सुशोभित हों उस भूमिका से संतुष्ट रहने पर उच्च भूमिका सहज ही प्राप्त होती है। स्वयं बहुत काम करने का लोभ न करो और जितना स्वयं सहज कर सको उसे दूसरों को न दो। सुख दुख में मान अपमान में सम रहने का तात्पर्य यह है कि अपमानित होने पर खिन्न न हो और मान मिलने पर फूल न जाए। इसका ये अर्थ कभी नहीं कि अपमान का अथवा दुख का इलाज न किया जाए। जिससे जितना मिल सके उतने से संतुष्ट रहें, नहीं तो हमारे नसीब में निराशा ही बदी रहेगी। अनासक्त होकर काम किया करोगे तो कभी निराशा नहीं होगी। हम किसी के काजी न बने। नौकर को हम नौकर न समझें, सगा भाई समझें। कभी न भूलें कि हमारे और देहातियों के बीच बड़ा अंतर है। वे बेबस हैं, अनजान हैं, गरीब हैं, उनके मुकाबले में हम सब तरह बलवान हैं। हमारा धर्म है कि वे हमारे बल को कभी न देखें। हमारी तरफ से उन्हें उदारता और नम्रता का ही अनुभव होना चाहिए। इसी में उनकी सेवा करने की चाबी है। हम एक दूसरे को सहन करें और आगे बढ़ें। अपने प्रति कठोर रहेंगे तो दूसरों के प्रति अपने आप उदार बन सकेंगे। हम स्वयं सचमुच दिल से मानते हैं कि ईश्वर है तो फिर हमें डर किस बात का। प्रयत्नशील रहने पर भी निष्फलता मिले तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने को संपूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तब हार जीत ईश्वर की ही हो जाती है। जो सत्य को न छोड़ते हुए तटस्थ रहता है वो चढ़ते गिरते भी एक दिन महासागर को पार कर ही लेता है। ईश्वर पर श्रद्धा कैसे जमे। बुद्धि बल के और पुरुषार्थ के अभिमान को छोड़कर अपनी तुच्छता को समझने से और अपने को रजवत मान लेने से। अहिंसा का ध्यान करते करते जिसकी अहिंसा वृत्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसे देह का मोह नहीं रह जाता, वो इस देह के छूटने पर

दूसरी देह धारण नहीं करता, लेकिन इस देह में तो देह को टिकाने जितनी हिंसा उसके हिस्से में रहती ही है। ये देह का धर्म है, इसे देह कैसे छोड़े। माता पिता स्वार्थ के वश होकर कोई सलाह दें तो विनय पूर्वक उसका अनादर किया जाए। माता पिता अपनी सेवा कराना चाहें और वो दूसरी तरह से हो सकने जैसी न हो तो पुत्र का धर्म है कि वो सेवा करे। लेकिन अगर पुत्र ने अपने को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया हो तो जिस तरह सन्यासी पुत्र माता पिता के संकट में भी उनके पास नहीं जा सकता, उसी तरह ये पुत्र भी देश सेवा छोड़कर नहीं जा सकता। अभी आपने सदाचार से संबंधित गांधी जी के विचार सुने और आइए अब सुनते हैं डीवी पलुस्कर की आवाज में बापू का प्रिय भजन।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अंजू शर्मा के गाए कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अंजू शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

श्रोताओं, अभी आपने सुना जैस्मिन सैंडलर्स और सतिंदर सरताज के स्वर में फिल्म धुरंधर का ये गीत। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह को फिल्म कबीर सिंह में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कॉकटेल फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दी थी नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने। गीत के बोल थे इरशाद कामिल के और संगीत था प्रीतम का। आइए अब सुनते हैं बेनी दयाल और सैफ अली को फिल्म ये जवानी है दीवानी में। संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम सुर सरिता भी समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से सरोद पर मल्हार के प्रकार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का सरोद पर बजाए मल्हार के प्रकार। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।

श्रोताओं, अभी आपने जो गीत सुना वो गीत था फिल्म हम आपके हैं कौन का। इसे आवाज दी थी लता मंगेशकर जी ने, राम लक्ष्मण ने इसको संगीतबद्ध किया था और गीत था देव कोहली जी का लिखा हुआ। एक फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्री के अलावा बहुत सारे किरदार रहते हैं और यही किरदार उस फिल्म की कहानी को दिलचस्प बनाते हैं, अनोखा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। इन किरदारों में होता है विलन का किरदार, बहुत से साइड रोल्स होते हैं, माता, पिता, बहन, भाई, दोस्त, शुभचिंतक और भी बहुत।

आज हम बात करेंगे आलोकनाथ जी के बारे में। आलोकनाथ जी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रहे। उनका जन्म हुआ 10 जुलाई सन 1956 को। हिंदी सिनेमा और टेलीविजन की अगर बात की जाए तो इनकी भूमिका फिल्मों में, धारावाहिकों में बहुत ही उम्दा रही। चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए आलोक जी अपने संस्कारी और पिता तुल्य किरदारों के लिए जाने गए। आपने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इनको संस्कारी बाबूजी कहकर भी पुकारा गया। 10 जुलाई 1956 को इनका जन्म दिल्ली में हुआ और इनका पैतृक स्थान रहा बिहार का खगड़िया। आपके पिता एक चिकित्सक थे और चाहते थे कि आलोक भी चिकित्सा के क्षेत्र में ही जाए। आमतौर पर ऐसा होता है, अमूमन ये देखा गया है कि माता पिता अगर किसी क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं और वो क्षेत्र अच्छा होता है, उसमें उन्हें सफलता मिलती है, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी को अपनाएं। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। लेकिन हर आत्मा जब इस संसार में आती है तो अपने कुछ संस्कारों को लेकर आती है और इसी के हिसाब से उसके गुण, उसकी विशेषताएं तय होती हैं और उसे किस क्षेत्र का चुनाव करना है, उसके जीवन का रास्ता कहां जाएगा, ये भी इस पर ही निर्भर करता है। आलोक की रुचि कला और अभिनय में शुरू से ही थी। इन्होंने पहले अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की। जी हाँ, NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बहुत सारे अभिनेताओं ने, अभिनेत्रियों ने, बहुत सारे कलाकारों ने एक्टिंग सीखी है, इसका प्रशिक्षण लिया है। साल 1982 में ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी से इन्होंने अपने करियर को शुरू किया। जी हाँ, इस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और इसके बाद मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसी फिल्मों को भला कौन नहीं जानता होगा। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इस फिल्मों में इन्होंने उम्दा, सशक्त और सुंदर किरदार निभाए। केवल फिल्में ही नहीं, इन्होंने टीवी की दुनिया में भी सपना बाबुल का, विदाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे बहुत से धारावाहिक जो बहुत पसंद किए गए, इसमें भी इन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाईं।

बात अगर 90 और 2000 के दशक की जाए तो आलोकनाथ जी ने फिल्मों में आदर्श पिता की भूमिका निभाई। इस भूमिका को काफी सराहा गया, इनकी भूमिका विश्वसनीय बनी और लोगों ने इसे काफी पसंद किया।

श्रोताओं, आलोक नाथ जी ने सन 1982 में सर रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित अंग्रेजी और हिंदी फिल्म गांधी से अपने फिल्मी करियर को शुरू किया और उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता। कभी ये फिल्मों में 80 वर्षीय एक बुजुर्ग का किरदार निभाते नजर आए और ये किरदार जब इन्होंने किया तो इनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी और अधिकतर किरदारों में इन्होंने संस्कारी पिता की भूमिका निभाई। श्रोताओं, हम जिस संसार में रहते हैं ना, वहां पर हमारे हर व्यवहार और कार्य पर प्रतिक्रिया होती है। ये प्रतिक्रिया कौन देता है? लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वही हमारे कार्य और व्यवहार को लेकर टिप्पणी करते हैं। किसी भी कार्य व्यवहार की समीक्षा सिर्फ समीक्षकों द्वारा नहीं की जाती। कोई कलाकार हो, आम इंसान हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति,

अगर वो सफल है या असफल है, दोनों ही स्थितियों में उसका कार्य अच्छा है या खराब है, दोनों ही स्थितियों में उसे लोगों द्वारा सराहा भी जाता है और उसकी निंदा भी होती है। इस संसार में बहुत सी मानसिकता के लोग रहते हैं और सभी लोग अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर उसके बारे में टीका टिप्पणी करते हैं। इनके सुंदर किरदारों को लेकर भी बहुत से लोगों ने इस बात को लेकर भी चुटकुले बनाए, अलग अलग तरह से आलोचना की, समीक्षा की, किसी ने बहुत प्रशंसा की, किसी ने कुछ। लेकिन सकारात्मकता एक ऐसा गुण है कि जब भी हम लोगों की बात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो अगर वो निंदा या बुराई भी होती है उस कार्य की, तो भी वो कहीं ना कहीं हमसे टकराकर दूर चली जाती है और इसका हमारे कार्य और व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में लोग पता नहीं क्या क्या पोस्ट करते रहते हैं, इनके कार्य को लेकर, इनकी बनाई गई फिल्मों और इनके किरदारों को लेकर भी लोगों ने कई बार कुछ जोक्स किए जिस पर इन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इन्हें जोक्स काफी पसंद आए। इनकी मीठी मुस्कान और सशक्त अभिनय को हमेशा सराहा जाता रहा और इसी से इन्होंने हिंदी बॉलीवुड में एक पहचान बनाई जो कि अमिट है।

श्रोताओं की था कार्यक्रम आज के कलाकार। आप इस समय आकाशवाणी के आगरा केंद्र से कार्यक्रम सुन रहे हैं। कुछ बातें कुछ गीत हमारे अगले कार्यक्रम का नाम है, जिसमें हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। आज का विषय है जल स्रोतों में बढ़ता प्लास्टिक कचरा। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वैशाली शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए बात करते हैं इसी विषय।

पर और समझते हैं कि ये समस्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है और किस तरह से हम इसका निदान कर सकते हैं। जल स्रोत जैसे कि झील, नदियां, समुद्र, हम बचपन से लेकर आज तक इन्हें देखते आए हैं, इन्हें समझते आए हैं। अक्सर अपने घर में लगाई हुई किसी तस्वीर पर जब हम किसी नदी, झील या समुद्र का चित्र देखते हैं तो उस चित्र को देखकर ही हम तरोताजा हो जाते हैं। प्राकृतिक वातावरण में होता ही कुछ ऐसा है, ये बहुत मनोरम होता है, मनोहारी होता है और सुकून, ठंडक, ताजगी और ऊर्जा देने वाला होता है। हमें तस्वीरों में पर्यटक स्थलों पर झीलों, नदियों और समुद्रों को देखकर बहुत खुशी मिलती है। अक्सर बहुत सारे पर्यटक पर्यटन स्थलों पर जाते हैं और इन चीजों का आनंद लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जल स्रोतों यानी बिल्कुल इन्हीं स्रोतों की हम बात कर रहे हैं, झीलों, समुद्रों और नदियों में प्लास्टिक का कचरा बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और वैश्विक स्तर पर है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से अलग अलग मात्रा में ये खतरा और ये संकट बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्रति वर्ष की बात करें तो हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है और इसे खत्म होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। ये हमारे पर्यावरण, जल में रहने वाले जीवों और मानव के भी स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। क्या कारण है इसके? ठोस कचरे का सही तरीके से संग्रह ना करना, उसकी रिसाइकलिंग ना होना, यानी कुल मिलाकर अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं? बिल्कुल है, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही, हमारा इस बात पर ध्यान ना देना, कचरे का सही प्रबंधन ना करना भी इसका एक कारण है। जिस चीज को हम अक्सर बहुत छोटा समझते हैं अपने दिनचर्या में कि ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े काम हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम है, हमारे पास समय नहीं है इस काम के बारे में सोचने का, क्या हम सोच सकते हैं कि वही काम, वही बात जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वही छोटी सी बात हमारे वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है? हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं, अपने वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, बचत करते हैं, उनके लिए एक सुंदर जिंदगी छोड़कर जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि अगर हम संसार से चले भी गए तो हम इस तरह का जीवन जिए कि अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देकर जाएं। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, इनको अनदेखा करके हम एक बड़ी समस्या को आमंत्रण दे रहे हैं? ये छोटी छोटी चीजें, ये बातें जिन्हें हम छोटा समझते हैं, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह से हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक, थैलियां, पानी की बोतलें और पैकेजिंग का भारी उपयोग करना और इनको इधर उधर फेंक देना। अक्सर बताया जाता है कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा हमें अलग अलग करना है। ये एक बहुत छोटी सी बात है और घर की महिलाएं, गृहिणियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, युवा सभी इस टेक्निक को अपना कर एक छोटी सी मदद कर सकते हैं सरकार की, सरकारी सेवा करने वाले कर्मचारियों की। इससे उनको रिसाइकलिंग करने में, कूड़े को अलग अलग करने के लिए जो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिक्कत होती है, वो नहीं करनी पड़ेगी। तूफानी पानी यानी बारिश और तूफानी पानी के बहाव से शहरों और नालों का कचरा सीधे नदियों और झीलों में पहुंच जाता है। आज भी जब कचरे को सही तरीके से व्यवस्थित करने की बात होती है, बावजूद इसके हम कचरे को कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह पर फेंक देते हैं। खासतौर से अपने आसपास घरों में अगर देखा जाए तो कोई अनपढ़ या ना पढ़े लिखे लोग नहीं, बल्कि समझदार और पढ़े लिखे लोगों को ऐसा करते हुए देखा गया है। एजुकेशन आपको क्या सिखाती है? हम अगर शिक्षित हैं तो हमें अपने पर्यावरण को भी समझना होगा, हमें एक सामाजिक इंसान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। इसके साथ साथ पर्यटन स्थल जहां पर लोग एक ब्रेक के लिए जाते हैं, वो अपनी रोजाना की दिनचर्या से बोर होकर कुछ पल सुकून के बिताने के लिए, दिल बहलाने के लिए जाते हैं, एक बड़ा बजट खर्च करके जाते हैं। कोई अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए जाता है तो कोई अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाता है। और इन्हीं पर्यटन स्थलों पर जहां पर जाकर हम सुकून और शांति की अपेक्षा रखते हैं, आनंद चाहते हैं, ऐसी जगहों पर ही पहाड़ों और नदियों के किनारे

0: घूमने वाले पर्यटकों द्वारा कचरा फैलाया जाता है। सोचिए कि यह कितनी संवेदनहीनता वाली बात है कि हमें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं है कि हम जिन खूबसूरत स्थानों पर घूमने जा रहे हैं, जिनकी खूबसूरती के हम कायल हैं, हम उन्हीं को बदसूरत बना रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का विषय यही है और इस विषय में छुपा हुआ संदेश तो शायद हम समझ ही रहे होंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसमें है कुछ बातें और साथ साथ कुछ गीत भी।
1: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सब

साथियों, हम बात कर रहे थे प्लास्टिक कचरे की, जो कचरा हमारे जल स्रोतों में लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए इसको थोड़ा सा और अलग अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका जो प्रभाव है वो पर्यावरण पर और जलीय जीवन पर किस तरह से पड़ता है। जाहिर सी बात है कि समुद्र में अगर बात की जाए तो समुद्र में बहुत से जीव रहते हैं, कछुए, मछलियां और जलीय पक्षी भी। इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और जब ये प्लास्टिक का कचरा, प्लास्टिक की पॉलिथीन समुद्र में जाती है तो जलीय पक्षी प्लास्टिक को भोजन समझते हैं और इसे खा लेते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे उनके जीवन को गंभीर खतरा होता है, उनकी जान भी चली जाती है। माइक्रोप्लास्टिक के निर्माण की अगर बात करें तो पानी में पड़ा हुआ प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में समय के बदलाव के साथ साथ टूटता जाता है, जो कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी बर्बाद करता है। अगर इंसान के स्वास्थ्य की बात करें तो माइक्रोप्लास्टिक और अन्य रसायन पीने के पानी और खाने के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका अंदाजा हमको वर्तमान में नहीं होता, लेकिन ये तब समझ में आता है जब लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं और हो भी रहे हैं। तो दूषित पेयजल की जो समस्या है, इसमें भी इसका योगदान है। स्वास्थ्य विकार की अगर बात करें तो मनुष्य में प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून डिसऑर्डर्स, प्रजनन से संबंधी गंभीर समस्याएं और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मनुष्य को प्रतिरक्षा प्रणाली की बहुत जरूरत होती है, उसको रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। ऐसे में पर्यावरण में फैला हुआ किसी भी तरह का प्रदूषण, फिर चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, किसी भी तरह का प्रदूषण मनुष्य को खतरा पहुंचाता है और इससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिसे हम अपना सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन में शामिल करें तो इस परेशानी से निजात मिल सकती है, इस परेशानी को दूर करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के थैलों को एक विकल्प की तरह उपयोग करें। सिंगल उपयोग वाली प्लास्टिक बोतलों को यूज करने के बजाय कांच या धातु के बर्तनों का उपयोग करें। याद रखिए कि ये जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं कांच या धातु के बर्तनों का, ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। भले ही हमें उनको इस्तेमाल करते समय उतना कंफर्टेबल फील ना होता हो, लेकिन उसका जो परिणाम है वो घातक नहीं होगा। अब कचरा प्रबंधन की अगर बात करें तो प्लास्टिक के कचरे को यहां वहां ना फेंकें, हमेशा एक कूड़ेदान में डालें। जाहिर सी बात है सभी के घरों में एक कूड़ादान जरूर होता है, ऑफिस में होता है, कार्यालयों में होता है, सार्वजनिक स्थलों पर होता है, तो उसका इस्तेमाल करें। कूड़ादान बना ही इसलिए है ताकि हम उसमें अपना कूड़ा डालें। आदिम अवस्था से लेकर अब तक मानव ने बहुत विकास किया, प्रगति की और अपने जीने के लिए हर आवश्यक वस्तु का निर्माण किया, रहने के लिए घर बनाया। घर में भी उसने अलग अलग कमरों को, अलग अलग जगह को अपनी सुविधा के हिसाब से बांटा। रसोई घर, खाना बनाने के लिए, बाथरूम नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए और बेडरूम सोने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से घर में एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसे कूड़ादान कहा जाता है। यहां पर कचरे को डालें, इधर उधर

ना फेंके। बच्चों में शुरू से ये आदत डालें कि उन्हें कचरा डस्टबिन में ही डालना है। सफाई अभियान की अगर बात करें तो नदियों और समुद्र तटों की नियमित सफाई बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उसके आसपास कचरा ना फैलाएं और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। ये छोटी छोटी बातें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर कहीं घूमने जाएं तो वहां भी इस बात का ख्याल रखें कि उस जगह को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाए रखना लोगों की ही जिम्मेदारी है, हमारी ही जिम्मेदारी है। इसलिए वहां पर गंदगी ना फैलाएं।

साथियों, हमारे देश भारत में दो प्रमुख मत्स्य पालन दिवस मनाए जाते हैं। विश्व मत्स्य दिवस जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन जलीय परिस्थिति तंत्र का संरक्षण किस तरह से किया जाए, सतत मछली पालन किस तरह से किया जाए, और मछली किसानों की आजीविका को समर्थन देने का क्या महत्व है, इन सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगर हम विश्व मत्स्य दिवस की बात करें तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना सन 1997 में वर्ल्ड फिशरीज फोरम द्वारा की गई थी। महासागरों, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछली पकड़ने की प्रथाओं के महत्व के बारे में जानना, समझना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही मछली जो कि पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है, ये दिन पारंपरिक मछुआरों

के अधिकारों, उनके हकों और समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन जो हुआ होता चला जा रहा है, इसको किस तरह से रोका जाए, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस भारत में मत्स्य पालकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। 10 जुलाई 1957 को वैज्ञानिक डॉ हीरालाल चौधरी और डॉ के एच अली कुनी द्वारा ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में यह दिवस मनाया जाता है। मछली पालन से जुड़े किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों की क्या भूमिका है, उनकी सराहना करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मछली पालन में किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। खाद्य सुरक्षा और पोषण में मत्स्य पालन का क्या महत्व है, आर्थिक लाभ की दृष्टि से किस तरह से मत्स्य पालन करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है और सरकारी

उद्यमियों की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। खाद्य सुरक्षा और पोषण में मत्स्य पालन का क्या महत्व है, आर्थिक लाभ की दृष्टि से किस तरह से मत्स्य पालन करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है और सरकारी योजनाएं इस क्षेत्र में कौन कौन सी हैं, इन सभी विषयों पर इसके अंतर्गत जानकारी प्रदान की जाती है और आम जनता को जागरूक किया जाता है।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त वैशाली शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार, हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: प्रिया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
0: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
0: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
0: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
0: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
0: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
0: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए।
1: 8800044559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था।

0: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे भागो, मार नहीं जाओगे। अरे भागो रे, अरे सिपाही आ गए। अरे अरे मार नहीं जाओगे।
1: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की,

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर, बढ़े चलो, बढ़े चलो सिकंदर।

0: सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।
1: अरे

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो,
3: वापस चलो
0: सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: हाँ? महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो,
4: धन्य हो,
5: धन्य हो।
6: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छिनी। पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए।

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुन रहे थे। न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर और

0: मीडियम वेव के मीटर्स पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तराने
1: के साथ। अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुन रहे थे। न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेव के मीटर्स पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तराने।

0: मार्खा इस फिल्म से आपने सुना शेखर अवजियानी, कमाल खान और राजा हसन की आवाज में ये गीत।
1: ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 1805 145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

कार्यक्रम नए तराने आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सुनी जुबिन गर्ग की आवाज में। प्रीतम ने संगीतबद्ध किया है इसे और इस गीत को बोल दिए हैं जयदीप सहानी ने।

फिल्म दम मारो दम से ये गीत आपने सुना और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तराने अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 106.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में

0: कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. The grand tour culminated in spectacular sports diplomacy at the iconic Melbourne Cricket Ground. Standing on the historic turf, the two leaders officially launched the India-Australia Sports Collaboration Roadmap. Prime Minister Narendra Modi will reach Auckland today on a 2-day visit to New Zealand. On the third and last leg of his 3-nation visit, Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India and New Zealand are celebrating 100 years of sporting ties in 2026. Hockey, which started this journey in 1926, continues to bring the two countries closer. The sporting relationship began in 1926 when the Indian Army hockey team became the first Indian sports team to tour New Zealand. Former Hockey New Zealand CEO and 1976 Olympic gold medalist Ramesh Patel says Prime Minister Narendra Modi's visit will further strengthen sports cooperation between the two countries. As India and New Zealand celebrate a century of sporting ties, hockey remains a strong bridge of friendship, connecting the people of both countries and inspiring future generations. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said clean

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बीकापुर असेंबली हलके के एमएलए अमित सिंह चौहान के वालिद साबिक वजीर आनजहानी मुन्ना सिंह चौहान के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। इसके साथ ही उन्होंने 432,70,09,000 रुपए के 217 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक, हाउसिंग स्कीम की चाबियां, आयुष्मान कार्ड और टूल किट्स भी तकसीम की। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब आवाम अच्छे नुमाइंदों को मुंतखब करती है तो तब्दीली आती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में तब्दीली और तरक्की नजर आ रही है, उसी तरह बीकापुर में भी तरक्की नजर आ रही है।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा।
0: पुलिस की एक खसूसी टीम ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नजराने में बेजाबतगियों की तहकीकात को तेज कर दिया है। पुलिस ने 8 मुलजमीन के तकरीबन 30 बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया है। साथ ही उनके खानदान के अफराद और रिश्तेदार भी शक के दायरे में हैं। पुलिस ने कई दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस दरमियान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने कहा कि ट्रस्ट अब ऐसे इंतजाम कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रू

0: जाना हो। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी वीआईपी पास सिस्टम में भी तब्दीलियां की गई हैं। खुसूसी पासेस के लिए नई रेफरेंस आईडी अभी जारी नहीं की गई है, इसलिए पहले से जारी किए गए खुसूसी पासेस की तौसीक की जा रही है, लेकिन नए पासेस नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। मरकजी वजीर में ममलकत बराए खजाना और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल मिर्जापुर में पार्टी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग की ताकि तंजीमी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जा सके। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में नजराने की चोरी की तहकीकात में जो भी कसूरवार पाया गया उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रियासती हुकूमत ने कल देर रात 20 आईएएस अफसरान का तबादला कर दिया, जिसके नतीजे में मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बड़ा रद्दोबदल हुआ है। मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल और मेडिकल एजुकेशन की सेक्रेटरी डॉक्टर सारिका मोहन को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। नेहा शर्मा जो इस ओहदे पर काम कर रही थी उनको डीजीएमई और सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन का चार्ज दिया गया है। इटावा के चीफ डेवलपमेंट अफसर अजय कुमार गौतम का तबादला करके उन्हें एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स गाजियाबाद फर्स्ट बनाया गया है। मुजफ्फरनगर में एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर तैनात संजय कुमार सिंह को इटावा का नया सीडीओ मुकर्रर किया गया है। एक मुल्क एक इंतखाब पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी आज से 15 जुलाई तक लखनऊ का दौरा करेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: रियासती हुकूमत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक मीटिंग में खसूसी हिदायत दी थी कि इस मुहिम को अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में अवाम की शिरकत के साथ मनाया जाए। इसको जहन में रखते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों के वुजरा मुख्तलिफ अजला में जाएंगे और पौधे लगाएंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे, जबकि नायब वजराए आला केशव प्रसाद मौर्य झांसी में और ब्रजेश पाठक पंकज चौधरी भी लखनऊ में एक दरख्त लगाएंगे। रियासत के कई अजला में कल से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। कुछ अजला में मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, हापुड़, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और बस्ती समेत कई अजला में कल हल्की से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ की
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार बहनों, कार्यक्रम घर संसार लेकर आपसे मिलने, बातें करने और गीत संगीत के माध्यम से आपका मनोरंजन करवाने आप पहुंची हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पाराशर। बहनों, हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा समुद्र और महासागरों से ढका है। विश्व की लगभग 40% आबादी समुद्री तटों के आसपास निवास करती है। समुद्र तटीय इलाकों में जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण है। समुद्र तटीय समुदायों की सबसे प्राचीन और मुख्य आजीविका मछली पकड़ना है। बहनों, मत्स्य पालन समुद्री भोजन की खेती का एक तरीका है। यह कृषि की तरह ही है, लेकिन इसमें मछलियों, समुद्री झींगों और शंखों का उपयोग किया जाता है।

मत्स्य पालन या जलीय कृषि एक अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय है। इसकी सही शुरुआत के लिए जुलाई अगस्त का समय सबसे उत्तम माना गया है। बहनों, मत्स्य पालन शुरू करने के लिए स्थान, पानी की गुणवत्ता और मछली की प्रजातियों का सही चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों में बायोफ्लॉक यानी कि कम जगह और कम पानी में अधिक उत्पादन का एक वैज्ञानिक तरीका है, और दूसरा तरीका है कि धान की खेती के साथ साथ मछली पालन करके किसान दोहरा मुनाफा कमाएं। बहनों, सन 1957 में 10 जुलाई को प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के एच अली कुन्ही ने ओडिशा के कटक स्थित तालाब संवर्धन प्रभाग में भारतीय मेजर कार्प मछलियों में हाइपोफिसेशन यानी कि प्रेरित प्रजनन की तकनीक का सफल प्रदर्शन किया था। इस तकनीक के सफल हो जाने के बाद देश भर में मछली उत्पादन की दिशा में एक बड़ी क्रांति आई, और यही कारण है कि हर साल 10 जुलाई यानी कि आज के ही दिन भारत में देश के मत्स्य किसानों, मछुआरों और जलीय कृषि से जुड़े विशेषज्ञों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। बहनों, जब समुद्री जीवन की बात चलती है तो हमारा मन भी समंदर किनारे पहुंच ही जाता है।

0: बहनों, परोपकार एक महान गुण है। मानव जीवन की सार्थकता भी यही है कि दूसरों की मदद और उनके कल्याण के लिए बिना स्वार्थ के प्रयासरत रहा जाए। ऐसे ही विषय को चित्रित करता है कमलजीत कौर का यह काव्य पाठ एक कोशिश।
1: आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मैंने एक हिंदी फिल्म से प्रभावित होकर लिखी है और मेरे निजी जीवन का एक हिस्सा भी है। हिंदी फिल्म को देखने के बाद मैंने भी एक प्रण कर लिया। तीन लोगों की मदद करने का मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया।
0: ऐसे ही विषय को चित्रित करता है कमलजीत कौर का यह काव्य पाठ एक कोशिश।
1: आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मैंने एक हिंदी फिल्म से प्रभावित होकर लिखी है और मेरे निजी जीवन का एक हिस्सा भी है। हिंदी फिल्म को देखने के बाद मैंने भी एक प्रण कर लिया। तीन लोगों की मदद करने का मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया। इसी संकल्प को पूरा करने में निकली घर से मंदिर की ओर। सोचा शायद रास्ते में मुझे मिल जाए बच्चा बूढ़ा औरत या कोई और। गाड़ी पर बैठी मैं राह देखती जा रही थी। अचानक से मेरी नजर पड़ी उस औरत पर जो सर पर गठरी का बोझ लिए धीमे से चलती जा रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और बोली, माता जी कहाँ जा रही हो आप? वो खिसियाते हुए बोली, अरे ये जानने वाली होते कौन हो आप? वो खिसियाते हुए बोली, अरे ये जा

खोजा। वो बड़बड़ाते हुए बोली, चल हट, मैं तो आपको जानते ही नहीं। वो बड़बड़ाते हुए बोली, चल हट, मैं तो आपको जानते ही नहीं। मैंने जवाब दिया, अगर मैं किसी के भी काम आ सकूं, इससे बड़ी तो कोई और बात नहीं। उसने पूछा, कौन से मजहब से हो आप? मैंने उत्तर दिया, ना हिंदू ना मुस्लिम ना किसी और कौम की हूँ। मैंने उत्तर दिया, ना हिंदू ना मुस्लिम ना किसी और कौम की हूँ। मेरी रगों में इंसानियत का खून है, मेरी रगों में इंसानियत का खून है। मैं अपने भारत देश की बेटी हूँ। अरे कैसा समाज है यहाँ, भला करना चाहो तो जात पूछता है। अरे कैसा समाज है यहाँ, भला करना चाहो तो जात पूछता है। मरते समय जब कब्र में दफनाओ जाओगे तो कौन किसी की औकात पूछता है। मन में निराशा लिए मैं आगे बढ़ उठी, अब किसी और से क्या पूछूं? यही सोच तो मेरे दिल में घर कर बैठी। मन में पूरा करने के तीन मकाम संजोए थे, मन में पूरा करने के तीन मकाम संजोए थे। दो तो अधूरे ही रह गए, दो तो अधूरे ही रह गए। देखो आखिरी बच्चे किस काम के थे। फिर मैंने लड़खड़ाते हुए एक बुजुर्ग को देखा और अपनी कोशिश का आखिरी पत्ता फेंका। बुजुर्ग लाठी लिए धीमे से चलता जा रहा था। बुजुर्ग लाठी लिए धीमे से चलता जा रहा था। सहायता के लिए वो सबके आगे हाथ फैला रहा था। मौका अच्छा था, मैंने गाड़ी रोक दी। उसकी मदद करने की इच्छा दिल खोल कर बोल दी। उन्होंने देखा मुझे ऊपर से नीचे तक। वो बोले, कहाँ ले जाओगी बेटी मुझे आगे तक? वो बोले, कहाँ ले जाओगी मुझे बेटी आगे तक? मैं बोली, बाबा मंदिर तक जा रही हूँ। मैं बोली, बाबा मंदिर तक जा रही हूँ, थोड़ा और आगे चल दूंगी। आप जहां भी बोलोगे वहां तक मैं आपको छोड़ दूंगी। सहारा लेते हुए लाठी का बाबा गाड़ी पर बैठ गए। बिना कुछ रोके टोके वो मेरे साथ चल दिए। आज के समय में बेटी कौन किसी का ऐसे साथ देता है? इंसान भी गिरगिट की तरह, हर पल अपना रंग बदलता है। मन में नई उमंग लिए मैं बाबा को छोड़ने जा रही थी। उधर बाबा के मुख से दुआओं की झड़ी लगी जा रही थी। भगवान खूब खुश रखे आपको, भगवान खूब खुश रखे आपको, आपके हर अरमान पूरे हो। बाबा तो अपनी मंजिल पर उतर गए। मन में एक खुशी की लहर थी, वो सब पूरा कर पाई जो आस मैंने अपने मन में धरी थी। अगर किसी काम को शिद्दत से पूरा करना चाहो, तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। मगर डर कर कभी भी हार ना मानो, यही सोच तो आपको आगे बढ़ने देती है। सेवा हमेशा सच्चे दिल से करो, भगवान भी कभी कभी इम्तिहान लेता है। सेवा हमेशा सच्चे दिल से करो, भगवान भी कभी कभी इम्तिहान

0: इम्तिहान लेता है। सबर करो, सबर करो, विश्वास रखो उस पर कमल। सबर करो, विश्वास रखो उस पर कमल। सेवा का फल तो, सेवा का फल तो वो सबको एक दिन जरूर देता है। सेवा का फल तो वो एक दिन सबको जरूर देता है।
1: बहनों, अभी आपने सुना कमलजीत कौर का काव्य पाठ एक कोशिश।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों, मानसून दस्तक दे रहा है, ऐसे में कच्ची मिट्टी पर गिरने वाली फुहारें चारों ओर एक सौंधी सी महक बिखेर देती हैं। हमारे बच्चों के लिए मिट्टी में खेलना भी उन्हें प्रकृति के करीब ले जाना है। आइए सुनते हैं मिट्टी और बचपन से जुड़ी एक छोटी सी बातचीत, जिसमें हमने की बातें विज्ञान विषय की अध्यापिका और एक गृहिणी श्रीमती प्राची शर्मा से।
3: प्राची जी, हमारे कार्यक्रम घर संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे अपने इस घर संसार कार्यक्रम में आमंत्रित किया। थैंक यू।
3: बारिश के मौसम में आने वाली मिट्टी की सौंधी सौंधी महक हम सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करती है और याद दिलाती है कि अपने बचपन में हम इससे कितने करीब थे। कभी हम इस मिट्टी से खिलौने बनाया करते थे तो कभी इसका स्वाद भी चख लिया करते थे।
4: सही कहा आपने, बारिश की वो मिट्टी की सौंधी खुशबू आज भी मन को सुकून देती है। बचपन की याद आते ही लगता है जैसे हम फिर से गली में कागज की नाव और मिट्टी के घरौंदे बना रहे हों। मिट्टी से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। उस समय हम बिना सोचे समझे मिट्टी में खेलते थे, खिलौने बनाते थे और हाँ, कभी कभी मिट्टी का स्वाद चख भी लेते थे। आज की पीढ़ी शायद मोबाइल में इतनी व्यस्त है, पर वो मिट्टी वाली खुशी और मासूमियत की बात ही अलग थी।
3: लेकिन आज बच्चे अगर मिट्टी में खेलना भी चाहें तो उनके बीमार होने की संभावना उनके माता पिता को जरा देती है। तो क्या बच्चों का मिट्टी में खेलना सही है?
4: हाँ, बच्चों को साफ और सुरक्षित वातावरण में सीमित समय तक मिट्टी से खेलने देना सही है। इससे उनका शारीरिक और साथ में मानसिक विकास भी होता है। वे प्रकृति से जुड़ते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन गंदगी, प्रदूषित और रसायन वाली मिट्टी से बचाना चाहिए और खेलने के बाद हाथ पैर अच्छी तरह से धुलवा के कपड़े जरूर बदलने चाहिए।
3: छोटी उम्र के बच्चे मिट्टी में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में माता पिता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
4: माता पिता को निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। बच्चों को केवल साफ और सुरक्षित जगह पर मिट्टी से खेलने दें। गंदी, कूड़े वाली और रसायन से दूषित मिट्टी से दूर रखें। तीसरा, खेलने के बाद साबुन से हाथ पैर अच्छी तरह धुलवाएं। ध्यान रखें कि बच्चे मिट्टी मुंह में ना डालें और बच्चों का टीकाकरण समय पर कराएं।
3: प्राची जी, एक बात हम अक्सर सुनते आए हैं कि मिट्टी जो होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को और भी बेहतर बनाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगी?
4: यह बात कुछ हद तक सही है। साफ और प्राकृतिक मिट्टी के संपर्क में आने से शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर प्रकार की मिट्टी सुरक्षित होती है। इसलिए बच्चों को सिर्फ साफ और सुरक्षित मिट्टी में ही खेलने दें।
3: यानी कि हमें अपने बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी के करीब खेलने देना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर बरतनी हैं। और इसी के साथ प्राची जी, आपने जो अपना अमूल्य समय हमें आज दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब हो

होती है जब ठान लिया जाता है। बहनों, जीतने का जुनून अगर मन में हो तो सफलता ज़रूर मिलती है, बात चाहे जीवन की हो या फिर खेल की। जी हाँ बहनों, आज कार्यक्रम घर संसार के सेगमेंट मेरी पहचान में जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, भारत की विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी हैं। सन 2002 में सिर्फ 15 साल की आयु में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर इतिहास रचने वाली कोनेरू हम्पी सन 2019 और सन 2024 में दो बार महिला वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियन भी रह चुकी हैं। कोनेरू फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बहनों, कोनेरू हम्पी का जन्म 31 मार्च सन 1987 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम हम्पी रखा जिसका अर्थ होता है चैंपियन, यानी कि यथा नाम तथा गुण। इनके पिता अशोक कोनेरू आंध्र प्रदेश राज्य शतरंज में प्रतिनिधित्व कर चुके थे। वे अपना सपना हम्पी से पूर्ण करवाना चाहते थे। 9 वर्ष की आयु में हम्पी ने 3 राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडल अपने नाम करवा लिए। कोनेरू ने 2006 में दोहा एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक भी हासिल किया और सन 2003 में भारत सरकार ने शतरंज में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 2007 में जब वह 20 साल की भी नहीं थी तब उन्हें पद्म पुरस्कारों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में हम्पी ने दसारी अन्वेश से विवाह कर लिया और एक बेटी को जन्म देने तक खेल से ब्रेक ले लिया। हालांकि ब्रेक से लौटने के बाद शुरुआती मुकाबलों क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सन 2019 में मॉस्को में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप वे जीत गईं। इस तरह अगर देखा जाए तो कोनेरू हम्पी ने शतरंज खेल जगत में भारत की बादशाहत को कायम रखते हुए भारतीय खेल प्रेमियों को अनमोल तोहफा दिया है। बहनों, अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट फैशन ब्यूटी की तरफ। एक स्वस्थ त्वचा देखभाल दिनचर्या में कई चरण शामिल होते हैं जिनमें फेशियल स्क्रब भी है। फेशियल स्क्रब न केवल त्वचा की गहराई में जमी अशुद्धियों को हटाता है बल्कि त्वचा को चमकदार भी बनाता है। स्क्रबिंग, जिसे एक्सफोलिएशन भी कहा जा सकता है, बहनों ये प्राचीन काल से ही लोगों द्वारा अपनी त्वचा को एक्सफोलिएट करने के लिए किसी खुरदरी चीज का इस्तेमाल करके किया जाता रहा। वैसे आजकल स्क्रब कॉफी, चीनी, बारीक पिसे हुए समुद्री नमक, दालचीनी, शहद, जई जैसी सामग्रियों से भी बनाए जाते हैं। बस फेस स्क्रब इस्तेमाल करने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए। वैसे तो बहनों बाजार में अलग अलग ब्रांड्स के फेशियल स्क्रब उपलब्ध हैं, लेकिन होम बेस्ड स्क्रब भी आप तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह अपनी त्वचा की उचित देखभाल अगर आप करेंगी तो आपकी त्वचा भी फूलों की तरह खिल उठेगी।

बहनों, दिन का सबसे पहला भोजन होता है नाश्ता। नाश्ते में हर दिन कुछ नया और अलग बनाया जाए तो घर के हर एक सदस्य का चेहरा खिल उठता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि नाश्ता हेल्दी भी हो। तो आइए बहनों, जानते हैं आज रेसिपी वेजिटेबल सूजी टोस्ट बनाने की। इसके लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो इस प्रकार है। 1 कप सूजी, आधा कप दही, आधा कप पानी, 2 मध्यम आकार के कटे हुए प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मध्यम आकार का कटा हुआ टमाटर, 1 छोटी कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कद्दूकस की हुई गाजर, आधा कप धनिया पत्ती और 6 से 8 ब्रेड स्लाइसेस, स्वाद अनुसार नमक, आधा कप मक्खन और हाँ 5 से 6 लहसुन की कलियां जो कि कद्दूकस की हुई हों। बहनों, सबसे पहले कटोरे में सूजी, दही और पानी को डालें और अच्छी तरह से इसे फेंट लें। सभी सब्जियां, मिर्च, लहसुन और नमक को भी इस घोल में मिला दें। इसे 10 मिनट के लिए रख दें और इसी बीच ब्रेड के स्लाइसेस को तिरछे 2 टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में मक्खन गरम करें और उस पर स्लाइस रखें और जब ये ब्रेड हल्की टोस्ट हो जाए तो उसे पलट दें। ब्रेड के ऊपरी हिस्से पर बटर लगाएं, दूसरी ओर से टोस्ट होने तक का इंतज़ार करें। दोबारा पलटते हुए उस पर यह घोल फैला दें। ब्रेड को दोनों ओर से सुनहरा, भूरा और कुरकुरा होने तक पकाएं। अब चटनी या सॉस के साथ परोसें। बहनों, इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर को अनुमति आपसे विदा लेने की। नमस्कार।

बहने सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर संसार। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सलीम हसन चिश्ती कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वाली।

कौरे विदेशी पिहरवा, ये मल्हार अभी आपने सुना हलीम सलीम हसन चश्ती के वाल और साथियों की आवाज में। अगली पेशकश सुनिए, बोल हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की।

सलीम हसन चिश्ती कव्वाल और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे कव्वाली। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव के मीटर्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़।

0: 14 over our country, and main zone of negative departures was recorded over eastern parts of Uttar Pradesh, Bihar, and northeast India, in south Kerala and coastal Karnataka, and western parts of the country, Saurashtra and Marathwada.
1: Monsoon activity continues to remain active across several parts of Himachal Pradesh, with persistent rainfall affecting many areas. A report.
2: The southwest monsoon continues to remain active in Himachal Pradesh, with widespread rainfall affecting normal life in Shimla, Solan, Sirmaur and several other parts of the state. Pachad in Sirmaur district recorded the highest rainfall of 207 millimeters since last night. Heavy rainfall has led to a rise in the water levels of the rivers and streams, prompting the administration to advise people to remain cautious and avoid venturing near water bodies. As a precautionary measure, all educational institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed today. Continuous rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
1: In the FIFA World Cup, in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on a two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
4: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
5: And, we've always had a good close relationship with India.

0: hockey and the early Indian teams that came here 100 years ago.
1: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
4: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism, and unity in diversity remain as

0: relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया।

0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए अब सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें सुनिए पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मिश्र पहाड़ी पर आधारित धुन।

पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन सुन रहे थे आप राग मिश्र पहाड़ी में। और अब सुनिए राग मांड पर आधारित सितार वादन। कलाकार हैं पंडित निखिल बनर्जी।

पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन आप सुन रहे थे राग मांड में। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। पुरानी फिल्मों से आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत। मुकेश की आवाज में ये पहला नगमा सुनिए। फिल्म का नाम है संगम, बोल हसरत जयपुरी के संगीत शंकर जयकिशन का।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म संजोग से। राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गीत को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। अगली पेशकश सुनिए फिल्म सौदागर से, रविंद्र जैन के गीत संगीत के साथ। आवाज है आशा भोसले की।

0: फिल्म सौदागर का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। इसी के साथ भूले बसरे गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के मीटर्स पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम अंजुमन में सबसे पहले सुनिए मकाना गंगा जमुनी तहजीब के अलमदार निदा फाजली।
1: आजादी के बाद शायरी की दुनिया से वाबस्ता होने वाले मखसूसो मुनफरिद लबो लहजे के शोरा में शहरयार, जुबैर रिजवी, बशीर बद्र, मुजफ्फर हनफी, मखमूर सईदी वगैरह के नाम सरे फहरिस्त हैं। उनमें एक नुमाया नाम निदा फाजली का भी है। शोरा का ये गिरोह ऐसे नामसाइद हालात में परवान चढ़ा है जब तहजीबी कदरों की शिकस्तगी ने कर्बो इज्महलाल की कैफियत पैदा कर दी थी। आजादी के पसे पुश्त हमारे मुल्क को दो बड़े सदमों से नबर्दाजमा होना पड़ा। एक तो मुल्क की तकसीम जिसने अंदरूने मुल्क नफरत की ऐसी खलीज पैदा कर दी थी जिसकी कसक आज तक जहनों पर अजाब की सूरत मुसल्लत है। दूसरा ये कि आजादी के बाद शुरू हुए फसादात के सिलसिले ने मुल्क को कौम की सालमियत और एक जहती को हमेशा के लिए दागदार बना दिया, जिसे देखकर फैज अहमद फैज को भी ये कहना पड़ा, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। आजादी अपने साथ जिन मसाइलों मसाइब को लाई थी यकीनन ऐसी तवक्को किसी को नहीं थी। शायर व अदीब मुनफरिद फिक्र व ख्याल का मुतहम्मिल होता है। वो हर मसले को अपनी खल्लाक तबीयत के जेर असर अपनी निगारिशात के जरिए हल करना चाहता है। इस एतबार से जब हम निदा फाजली की शायरी का मुताला करते हैं तो ये महसूस होता है कि वो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को फरोग देने में ताउम्र न सिर्फ कोशा रहे बल्कि 100% कामयाब भी रहे हैं। उनका मशहूर जमाना शेर गोश गुजार हो, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, ये वो पैगाम है जो मजहब की कयूद से आजाद है, या यूं कह लीजिए कि ये नजरिया हर मजहब की असास है। क्योंकि निदा ने रोते हुए बच्चे को किसी मखसूस मजहब के हिसार में महसूर नहीं किया है, उन्होंने हमेशा मजहब की आड़ में घिनौना खेल खेलने वालों पर तनकीद की है। पहले जैसा ही दुखी है आज भी बूढ़ा कबीर, कोई आयत का मुखालिफ कोई मूरत के खिलाफ। उन्होंने ऐसे पुराशोभ दौर में जब इंसानियत दम तोड़ रही है और इंसानी अकदार माइल व जवाल हैं, मगर हमारे मुल्क के बा इक्तदार अफराद खामोश तमाशाई बने बैठे मुल्क की बर्बादी का मंजर मुलाहजा कर रहे हैं, उन लोगों पर तंज करते हुए लिखते हैं, मैं भी चुप हूँ तू भी चुप है, बात ये सच है मगर हो रहा है जो भी वो तो है तबीयत के खिलाफ। उन्होंने तंजिया लहजे में उस दोरुखी पॉलिसी पर भी सख्त वार किया है जिसमें अंदरूनी कैफियत को मुनाफकत के नकाब में छुपाकर जाहिरी हमदर्दी व उनसियत का दिखावा किया जाता है। इस मुशाहदे के बाद वो यहाँ तक कह जाते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। अल्लामा शिबली की जमीन पर कही गई उनकी ये गजल बहुत अहमियत की हामिल है जिसमें उन्होंने हर मजहब की ताजीम की ख्वाहिश जाहिर की है और ये बावर कराने की कोशिश की है कि हर मजहब लायक ताजीम है। नफरत को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, हर शख्स अपने मजहब की तालीमात पर अमल करने में खुद मुख्तार है, मगर उसे ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी मजहब के नजरियात व अकाइद पर तनकीद करे। मसलन ये अशार देखिए, दूसरों के लिए आजार ना होने पाए आदमी इतना भी खुददार ना होने पाए, हर अदालत उसी मुजरिम को बरी करती है जुर्म करके।

0: जो गुनहगार ना होने पाए। कहीं उड़ने दो परिंदे, कहीं उगने दो दरख्त, हर जगह एक सा बाजार ना होने पाए। उसके होने की हैं तावीलें सभी की अपनी, किसी तकरार में इनकार ना होने पाए। जब उनके तंस का नश्तर चलता है तो खुद उनके मजहब के जाली ठेकेदार भी महफूज नहीं रह पाते हैं, जो मजहबी अकायद को गलत सिंत में ले जा रहे हैं और दहशतगर्दी को इस्लाम के पाक दामन से जोड़कर मजहब को बदनाम कर रहे हैं। शेर मुलाजा हो, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया। निदा की शायरी का बेशतर हिस्सा इंसानी अखुव्वत व मुरव्वत के मौजूआत को मुहित है। वो तमाम उम्र इंसानियत के मुतलाशी रहे हैं। दिन ब दिन निढाल होता कौमी जज्बा, मजहब के नाम पर तशद्दुद बरपा करने वाले मजहबी ठेकेदार, और ऐसे में जहां बलब होती इंसानियत। इन तमाम बातों को निदा ने बहुत करीब से देखा और उनके मनफी नताइज को महसूस किया। उन्होंने मुआशरे में फैली बदउनवानियों के खिलाफ कारी जर्ब लगाई है। उनके नजदीक इंसान तो है मगर इंसानियत मादूम हो गई है, आदमी का वजूद तो है मगर आदमियत लावजूद हो गई है। ऐसे पुरफितन माहौल में इंसानियत का ये मुतलाशी अहले जमाना से सवाल करता है, ये ना पूछो कि वाकिया क्या है, किसकी नजरों का जाविया क्या है। सब है मसरूफ, कौन बतलाए आदमी का आता पता क्या है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। निदा उस मजहबी तफरीक के जो करी सूरत इख्तियार कर चुकी है सख्त मुखालिफ है। हद से मुतजाविज मजहबी तशद्दुद ने इंसान को कई खानों में तकसीम कर दिया। हर इंसान खुद को किसी न किसी मजहब के सांचे में ढालने की तो पुरजोर कोशिश करता है मगर इंसानियत से खुद को महरूम रखता है। ऐसे खोखले मजहबी तसव्वुरात को जिनमें रूही मजहब मजरूह हो चुकी हो निदा सख्त मकरूह जानते हैं। नमूने कलाम के तौर पर उनके चंद अशार मुलाजा हों, गिरजा में मंदिरों में अजानों में बट गया, होते ही सुबह आदमी खानों में बट गया, एक इश्क नाम का जो परिंदा खला में था, उतरा जो शहर में तो दुकानों में बट गया। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। इतनी खूंखार न थी पहले इबादत गाहें, ये अकीदे हैं कि इंसान की तन्हाई है। फिर वो सबको इत्तेहाद का दर्श देते हुए कहते हैं, हिंदू का हो दान या मुस्लिम की खैरात, गेहूं चावल दाल का क्या मजहब क्या जात। निदा फाजली उस पुरअलम दौर में जिसमें वो सारी उम्र नाला रहे हैं, बावजूद इसके उनकी उलूल अजमी को लगदिश नहीं आई। वो एक जवान मर्द की मानिंद अपने मौकिफ की तबलीग में हमेशा कोशा रहे और ये पैगाम आम करते रहे, तन्हा तन्हा हम रोलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू साथ रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। दुनिया के फरसूदा रिवाज जिसमें किसी की कामयाबी का इन्हिसार दूसरों की पस्ती पर हो, वो सख्त लहजे में उसकी अक्कासी करते हैं कि दुनिया का उसूल यही है कि यहाँ अगर आगे बढ़ना हो तो दूसरों को कुचलना पड़ता है। लेकिन वो इससे खुश नहीं बल्कि बेजार हैं। उनके तंजिया अशार मुलाहजा हों, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। निदा के इंतकाले पुरमलाल से अदब की दुनिया में जो खला वाक़े हुआ है, मुस्तकबिल करीब में उसका पुर होना मुश्किल नजर आ रहा है। ये एक नाकाबिले तर्दीद हकीकत है कि हर आने वाले को एक दिन इस सराय से कूच करना ही पड़ता है, मगर एक अदीब की ये शान होती है कि वो अपनी तहरीरों अपनी निगारिशात और अपने फिक्र ख्याल की बुलंदियों के सबब हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। बकौल शायर, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, वरना दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। निदा की रहलत पर पूरी उर्दू दुनिया सोगवार है और उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है, कौन रुखसत हुआ खुदाई से, हर तरफ ये खुदा खुदा क्या है।
1: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन में अभी आप सुन रहे थे मकाला गंगा जमुनी तहजीब के अलमदार निदा फाजली। मकाला निगार थे सैयद मोहम्मद अकील।

0: कलामी शायर ने अब सुनिए मोहम्मद इश्तियाक आलम को।
1: सामईन हजरात आदाब, गजल का मतला समाप्त करें। कहना है कि है दिल चूर गम से लबों पर हंसी है, है दिल चूर गम से लबों पर हंसी है, यही जिंदगी आज की जिंदगी है। है दिल चूर गम से लबों पर हंसी है, यही जिंदगी आज की जिंदगी है। और मतलब देखें एक और, कि जिधर देखता हूँ उधर तीरगी है, जिधर देखता हूँ उधर तीरगी है, कहाँ है उजाला कहाँ रोशनी है, जिधर देखता हूँ उधर तीरगी है, कहाँ है उजाला कहाँ रोशनी है। हुआ है मेरा आशियाँ खाक जलकर, हुआ है मेरा आशियाँ खाक जलकर, सरे गुलसिता जब भी बिजली गिरी है। हुआ है मेरा आशियाँ खाक जलकर, सरे गुलसिता जब भी बिजली गिरी है। और कहीं गूंजते हैं मसरत के नगमे, कहीं गूंजते हैं मसरत के नगमे, कहीं गम है आंसू हैं और बेबसी है, कहीं गम है आंसू हैं और बेबसी है। और मक्ते का शेर के ये मतलब परस्तों की दुनिया है आलम, ये मतलब परिश्तों की दुनिया है आलम, यहाँ जिससे मिलिए वही मतलबी है, यहाँ जिससे मिलिए वही मतलबी है। एक गज़ल का मतलब और समाप्त करें कि कुछ इस अदा से आपके तीरे नज़र चले, कुछ इस अदा से आपके तीरे नज़र चले, जीने की आरजू थी मगर हम तो मर चले। कुछ इस अदा से आपके तीरे नज़र चले, जीने की आरजू थी मगर हम तो मर चले। और आँखों में अश्क पहलू में लेकर उदास दिल, आँखों में अश्क पहलू में लेकर उदास दिल, हम अपने साथ लेके ये रखते सफ़र चले, हम अपने साथ लेके ये रखते सफ़र चले। और हमको न थी पसंद सहारों की ज़िंदगी, हमको न थी पसंद सहारों की ज़िंदगी, खुद लेके अपने कांधों पे हम अपना सर चले। हमको न थी पसंद सहारों की ज़िंदगी, खुद लेके अपने कांधों पे हम अपना सर चले। हाँ रिस्क की तलाश में छोड़ आए थे जो घर, हाँ रिस्क की तलाश में छोड़ आए थे जो घर, होते ही शाम लौट के पंछी वो घर चले, होते ही शाम लौट के पंछी वो घर चले। हम जिंदगी तमाम सफ़र में गुजार दें, हम जिंदगी तमाम सफ़र में गुजार दें, ए गुल बदन तू साथ हमारे अगर चले। हम जिंदगी तमाम सफ़र में गुजार दें, ए गुल बदन तू साथ हमारे अगर चले। और मक्ते का शेर के रोते हैं फूट फूट के पैरों के आबले, रोते हैं फूट फूट के पैरों के आबले, आलम तलाश यार में हम इस कदर चले, आलम तलाश यार में हम इस कदर चले। ये गज़ल का मतलब और समाप्त करें कि मुझसे छुड़ा के हाथ मेरा हम सफ़र गया, मुझसे छुड़ा के हाथ मेरा हम सफ़र गया, बेकैफ ज़िंदगी का सफ़र आज कर गया, मुझसे छुड़ा के हाथ मेरा हम सफ़र गया, बेकैफ ज़िंदगी का सफ़र आज कर गया। और ईसार और वफा का ज़माना कहाँ है अब, ईसार और वफा का ज़माना कहाँ है अब, ईसार और वफा का ज़माना गुजर गया, ईसार और वफा का ज़माना कहाँ है अब, ईसार और वफा का ज़माना गुजर गया। और बरकत ना आएगी कभी घर में ये सोच लो, बरकत ना आएगी कभी घर में ये सोच लो, मेहमान रूठ कर कोई तुमसे अगर गया, बरकत ना आएगी कभी घर में ये सोच लो, मेहमान रूठ कर कोई तुमसे अगर गया। और जिसकी हवा थी शहरे सियासत में हर तरफ, जिसकी हवा थी शहरे सियासत में हर तरफ, बनकर वो खाक कब का हवा में बिखर गया, बनकर वो खाक कब का हवा में बिखर गया। और उसने किया था तरके ताल्लुक का फैसला, उसने किया था तरके ताल्लुक का फैसला, इल्ज़ाम बेवफाई मगर मेरे सर गया, उसने किया था तरके ताल्लुक का फैसला, इल्ज़ाम बेवफाई मगर मेरे सर गया। और ये मक्ते का शेर के अब रोशनी के वास्ते रोशन करो चराग, अब रोशनी के वास्ते रोशन करो चराग, आलम लुटा के रोशनी सूरज तो घर गया, आलम लुटा के रोशनी सूरज तो घर गया। एक मतला और समाप्त करें। कहना है कि रकम यूं तो कहानी कर रहा हूँ, रकम यूं तो कहानी कर रहा हूँ, मगर मैं हक बयानी कर रहा हूँ, रकम यूं तो कहानी कर रहा हूँ, मगर मैं हक बयानी कर रहा हूँ।

कांटों को हटाकर गुलसितां से, मैं कांटों को हटाकर गुलसितां से गुलों पर मेहरबानी कर रहा हूँ, गुलों पर मेहरबानी कर रहा हूँ, मैं कांटों को हटाकर गुलसितां से गुलों पर मेहरबानी कर रहा हूँ, और मुहाफिज़ अब मेरा कोई नहीं है, मुहाफिज़ अब मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ही पासवानी कर रहा हूँ, मुहाफिज़ अब मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ही पासवानी कर रहा हूँ, और पढ़ी है जो हदीस इश्क मैंने, पढ़ी है जो हदीस इश्क मैंने, बयां उसके मुआनी कर रहा हूँ, बयां उसके मुआनी कर रहा हूँ, मैं जुगनू हूँ मगर तारीख शब में, मैं जुगनू हूँ मगर तारीख शब में, बराबर ज़ौफ़िशानी कर रहा हूँ, बराबर ज़ौफ़िशानी कर रहा हूँ। और मक्ते का शेर ये देखें कि अधूरी है जो आलम मुद्दतों से, अधूरी है जो आलम मुद्दतों से, मुकम्मल वो कहानी कर रहा हूँ, मुकम्मल वो कहानी कर रहा हूँ। एक मतलब और समाप्त करें कि नज़रों को मेरी मंजरे मस्ताना चाहिए, नज़रों को मेरी मंजरे मस्ताना चाहिए, ऐसे में तुमको सामने आ जाना चाहिए, नज़रों को मेरी मंजरे मस्ताना चाहिए, ऐसे में तुमको सामने आ जाना चाहिए, और पाकीज़ा जिसके पीने से हो जाए ज़िंदगी, पाकीज़ा जिसके पीने से हो जाए ज़िंदगी, ऐसी शराब और वो पैमाना चाहिए, ऐसी शराब पाकीज़ा जिसके पीने से हो जाए ज़िंदगी, ऐसी शराब और वो पैमाना चाहिए, इश्को वफा की आग में परवाने की तरह, इश्को वफा की आग में परवाने की तरह, जलना अगर पड़े भी तो जल जाना चाहिए, इश्को वफा की आग में परवाने की तरह, जलना अगर पड़े भी तो जल जाना चाहिए, और कतरों से बुझने वाली नहीं है हमारी प्यास, कतरों से बुझने वाली नहीं है हमारी प्यास, हमको तो पीरे मैकदा मैखाना चाहिए, हमको तो पीरे मैकदा मैखाना चाहिए, और शर्मो लिहाज फिक्रे ज़माना को भूल कर, शर्मो लिहाज फिक्रे ज़माना को भूल कर, महबूब घर पिलाए तो पी जाना चाहिए, महबूब घर पिलाए तो पी जाना चाहिए। एक गज़ल का एक मतलब चंद शेर समाप्त करें कि यूं न कर नीची निगाहें सर उठाकर देख ले, यूं न कर नीची निगाहें सर उठाकर देख ले, मेरे हमदम मेरी जानिब मुस्कुराकर देख ले, यूं न कर नीची निगाहें सर उठाकर देख ले, मेरे हमदम मेरी जानिब मुस्कुराकर देख ले, आह निकलेगी न लब से जुल्म पर तू जुल्म ढा, आह निकलेगी न लब से जुल्म पर तू जुल्म ढा, यार मेरे जब्त को तू आजमा कर देख ले, यार मेरे जब्त को तू आजमा कर देख ले, और दूर से क्या मुश्किलों को देखता है तू मेरी, दूर से क्या मुश्किलों को देखता है तू मेरी, तू मेरा हमदर्द है तो पास आकर देख ले, दूर से क्या मुश्किलों को देखता है तू मेरी, तू मेरा हमदर्द है तो पास आकर देख ले, और उस तरफ का हर नज़ारा खुशनुमा हो जाएगा, उस तरफ का हर नज़ारा खुशनुमा हो जाएगा, अंजुमन में जिस तरफ तू मुस्कुरा कर देख ले, उस तरफ का हर नज़ारा खुशनुमा हो जाएगा, अंजुमन में जिस तरफ तू मुस्कुरा कर देख ले, और मुझसे मिलकर हो गया है और भी तू खूबरू, मुझसे मिलकर हो गया है और भी तू खूबरू, आईने में अपने चेहरे को तू जाकर देख ले, मुझसे मिलकर हो गया है और भी तू खूबरू, आईने में अपने चेहरे को तू जाकर देख ले, और कर्ब को मेरे अगर तुझको समझना है तो फिर, कर्ब को मेरे अगर तुझको समझना है तो फिर, चंद ही आंसू मुरव्वत में बहाकर देख ले, कर्ब को मेरे अगर तुझको समझना है तो फिर, चंद ही आंसू मुरव्वत में बहाकर देख ले, और नाम है जिसका मोहब्बत किस कदर देती है दुख, नाम है जिसका मोहब्बत किस कदर देती है दुख, ये समझना है तो आलम दिल लगा कर देख ले, ये समझना है तो आलम दिल लगा कर देख ले। एक गजल का मतलब संसर समाप्त करें कि जाना अगर है तुझको तो बेशक तू यार जा, जाना अगर है तुझको तो बेशक तू यार जा, लेकिन मोहब्बतों का नशा ये उतार जा, जाना अगर है तुझको तो बेशक तू यार जा, लेकिन मोहब्बतों का नशा ये उतार जा, और मेरी वफाओं का ये सिला मुझको कर आता, मेरी वफाओं का ये सिला मुझको कर आता, पत्थर मेरे वजूद के शीशे पे मार जा, मेरी वफाओं का ये सिला मुझको कर आता, पत्थर मेरे वजूद के शीशे पे मार जा। और शेर देखें कि ऐ रह गुजारे इश्क के रहजन जरा ठहर, ऐ रह गुजारे इश्क के रहजन जरा ठहर, ऐसे न लूट कर मेरा सब्रो करार जा, ऐसे न लूट कर मेरा सब्रो करार जा, और मुड़ मुड़ के मेरी समत ना तू देख बार बार, मुड़ मुड़ के मेरी समत

0: न तू देख बार बार, आंखों को मेरी और न कर अश्क बार जा, आंखों को मेरी और न कर अश्क बार जा, वो दिल की दास्तान तू सुन ले जो लब पे है, वो दिल की दास्तान तू सुन ले जो लब पे है, ऐसे न मुझको छोड़ के जाने बाहर जा, ऐसे न मुझको छोड़ कर जाने बाहर जा, और तुझको ये हक है चल मेरे जज्बात रौन कर, तुझको ये हक है चल मेरे जज्बात रौन कर, करते हुए तू दिल पे सितम बार बार जा, तुझको ये हक है चल मेरे जज्बात रौन कर, करते हुए तू दिल पे सितम बेशुमार जा, करते हुए तू दिल पे सितम बेशुमार जा, और तेरी इसी में जीत है आलम इसी में जीत। मक्ते का शेर देखें कि तेरी इसी में जीत है आलम इसी में जीत, दिल का लगा के दाव मोहब्बत में हार जा, दिल का लगा के दाव मोहब्बत में हार जा। बहुत शुक्रिया।
1: कलामी शायर में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद इश्तियाक आलम को। आइए अब सुनते हैं अफसाना रोशन चिराग। अफसाना निगार है महमूदा कुरैशी।
2: चिराग आज जब स्कूल से वापस आया तो काफी थका हुआ था, और वो आते ही अपने कमरे में चला गया। बेटे को यूं निढाल देखकर माँ भी पानी का गिलास हाथ में लिए उसके कमरे में दाखिल हो गई। चिराग, आज आप शूज बाहर उतारे बगैर ही कमरे में दाखिल हो गए, और ये क्या, आपने चेंज भी नहीं किया, और ये आपकी ड्रेस इतनी गंदी कैसे हो गई, माँ ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। चिराग किसी भी बात का जवाब दिए बगैर माँ की गोदी में सर रखकर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, माँ कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी क्लास टीचर बहुत गंदी हैं, वो मुझसे बहुत काम कराती हैं, आज उन्होंने हमसे पूरी क्लास साफ कराई और पूरी क्लास को हम सभी दोस्तों ने मिलकर डेकोरेट भी किया, और ऊपर दीवार पर जब मैं स्टार लगा रहा था तो मेरा पैर बेंच से फिसल गया और मैं धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सब दोस्त मेरे ऊपर हंसने लगे, और तो और सोनाली मैम भी हंस रही थी, माँ देखो मेरे कितनी चोट लगी है, अपनी चोट पर फूंक मारते हुए उफ, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल तो सोनाली मैम को गिफ्ट भी देना होगा, जिसने मेरे कपड़े गंदे कराए और सबके सामने मेरा मजाक बनाया और कहा चिराग से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, और तो और पढ़ाई में वीक होने का ताना भी दिया, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत गंदी है सोनाली मैम, और टीचर्स डे बनाया ही किसने है, क्यों मनाते हैं टीचर्स डे, जरूर इस दिन सोनाली मैम का बर्थडे होगा, गिफ्ट बटोरने के लिए बस कह दिया है टीचर्स डे है, चिराग ने मुंह बनाते हुए कहा। ना बोला ना ऐसे नहीं कहते अपनी मैम के बारे में, वो आपकी उस्ताद हैं, माँ ने डांटते हुए कहा। ये तो बहुत पहले से ही 5 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में योमे असतजा यानी टीचर्स डे मनाया जाता है, और बेटा 5 सितंबर को सोनाली मैम का बर्थडे नहीं है, 5 सितंबर को तो अजीम मुफक्किर दानिश्वर और अबकरी शख्सियत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योम पैदाइश को हम योम असतजा यानी टीचर्स डे की शक्ल में मनाते हैं, माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा। लेकिन माँ हमारी जीके की बुक में तो टीचर्स डे 5 अक्टूबर को लिखा है, चिराग ने फौरन ही माँ के सामने एक सवाल पेश कर दिया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनाली मैम ख्वामहाँ ही कहती हैं कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, माशाल्लाह तुम्हारा हाफजा बहुत तेज है, जो तुम्हें अपनी सारी किताबों के बारे में अच्छे से मालूमात हासिल है, और माँ ने बेटे के बालों को सहलाते हुए जीके की किताब की मुफस्सल हवाले के साथ वजाहत करते हुए कहा। हाँ हमारे मुल्क में तो योम असतजा 5 सितंबर को ही मनाया जाता है, जबकि आलमी योम असतजा 5 अक्टूबर को मनाते हैं बेटा, जो 1994 से जारी है, यूनेस्को जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है उसने ही इस रस्म की ऐजाद की। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं जो मुख्तलफ तारीखों में योम असतजा मनाया करते हैं, जिस तरह हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलफ कौमी और मजहबी त्यौहार मनाते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे मुल्कों में भी अपने कौमी और मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं। मजीद अपनी बात को मुकम्मल करते हुए माँ ने चिराग को हिदायत की, अब तुम पहले फ्रेश हो जाओ और ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, और हाँ कल तुम्हारे बोलने के लिए मैंने एक स्पीच भी तैयार की है, बस तुम एक दो बार पढ़ लेना तो तलफ्फुज की गलतियाँ भी निकल जाएंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, कहते हुए माँ किचन की तरफ चली गई। चिराग ने भी नफी में सर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ।

बहुत जोरों की भूख लगी है। चराग स्कूल पहुंचकर अपने दोस्तों साथियों को टीचर्स के लिए लाए हुए ताहिफ को फखरिया तौर पर एक दूसरे को दिखाते हुए देख मुस्कुराता हुआ किसी को भी अपने गिफ्ट दिखाए बगैर ही बहुत खामोशी के साथ बैठकर सोनाली मैम का इंतजार करने लगा। तभी बैल बज गई और सभी बच्चे हाल में पहुंच गए। दूसरे ही लम्हा सोनाली मैम ने अपनी बात पेश करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, गौर करो, फिक्र करो, जुस्तजू करो, मुशाहिदा करो। आसमान की बुलंदियों और जमान की तहों से इस दुनिया के पोशीदा राजों और खजानों को ढूंढ निकालो और उन पर तहकीक करो, यानी रिसर्च करो। तालिबिल इल्म जब इल्म हासिल करने निकलता है तो तालीम से उसका मकसद जहनी, जिस्मानी और रूहानी नशोदनुमाई करना होता है। इस मकसद को हासिल करने में तलबा को काबिले कदर असातिज़ा के इंतखाब करना होता है जो हुसूल तालीम का मकसद हल करने में उनकी मदद करें, उसके जहन को जिला बख्शें, उसको समझने का सही उसलूब सिखाएं, उसमें नजरी और तनकीदी निगाह कायम करें और तलबा को फिक्री इज्तिहाद के काबिल बनाएं। जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, मैं पढ़ाता नहीं, जगाता हूँ। और हुसूल मकसद को हल करने में अगर तालिबिल इल्म को सही उस्ताद मिल गया और उसने तालिबिल इल्म को सही राह पर डाल दिया तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह एक इंसान की कामयाबी में उसके असातिज़ा का बहुत अहम किरदार होता है। सभी असातिज़ा और तालिबिल इल्मों ने भी फिर एक बार तालियों से माहौल को गर्मा दिया। इसके साथ ही प्रिंसिपल मैम ने अख्तिताम का ऐलान कर दिया और सभी तलबा अपनी अपनी क्लासों में चले गए। क्लास में पहुंचकर सभी बच्चों ने सोनाली मैम को गिफ्ट दिए। जब चराग ने सोनाली मैम की तरफ अपना गिफ्ट बढ़ाया तो सोनाली मैम ने उसे लेने से इनकार करते हुए कहा, सॉरी चराग, तुम्हारा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती, पहले तुम पढ़ाई में अच्छे बनकर दिखाओ, तभी मुझे ये गिफ्ट लेने में फख्र महसूस होगा। सिर्फ नाम चराग रख लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने हिस्से के चराग खुद ही रोशन करने होते हैं। चराग रोता हुआ क्लास से बाहर चला गया और आज 20 साल बाद अपने आंसू साफ करते हुए चराग ने कहा, थैंक यू सोनाली मैडम, क्योंकि आज उसे 20 साल बाद टीचर्स डे पर खुद अपने ही स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है तो उसके जहन में सोनाली मैम के कहे वो सारे जुमले रक्स कर रहे हैं। आज जबकि वो अपने ही शहर में IAS ऑफिसर है तो खुद पर गुजरे सारे लम्हात रह रह कर याद आ रहे हैं और स्कूल पहुंचने की भी जल्दी है जैसे कि 20 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन साथ ही ये भी खदशा लाहक था कि अब पता नहीं सोनाली मैम कहाँ होंगी। खुद से ही बड़बड़ाते हुए चराग ने कहा, स्कूल में दाखिल होते ही चराग का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और जल्द ही प्रोग्राम की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। जब IAS ऑफिसर मोहम्मद चराग से प्रिंसिपल साहिबा ने अपने तलबा की हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज पेश करने को कहा तो उसने बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा, अजीजम, मेरे लिए निहायत इफ्तिखार का मकाम है कि आज मैं आपके सामने आपसे रूबरू हूँ। एक उस्ताद जिंदगी में क्या मानी रखता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दरअसल उस्ताद ही जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है और तालिबिल इल्म भी अपने असातिज़ा से ये तवक्को रखता है, क्योंकि बचपन में असातिज़ा ही तालिबिल इल्म के रोल मॉडल होते हैं। अगर असातिज़ा का किरदार खुद मिसाली होता है तो जाहिर है तालिबिल इल्म में उन खूबियों का आना फितरी है। एक बज़हीन तालिबिल इल्म अपने असातिज़ा की ही नकल मकानी करता है। उनके असातिज़ा का पढ़ाने का अंदाज कैसा है या वो किस तरह से समझाते हैं कि वो हमेशा के लिए उनको ज़हन-नशीन हो जाता है। अक्सर तलबा को ये कहते हुए सुना जाता है कि मुझे फला टीचर की क्लास लेना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फला उस्ताद का समझाने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। एक उस्ताद ही होता है जिसकी सिर्फ एक बात, एक अंदाज तालिबिल इल्म को वो फिक्री नजर बख्श सकती है जिससे तालिबिल इल्म की पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो सही राह पर कामजन होता है। इसी स्कूल में मौजूद हमारी साइंस टीचर सोनाली मैम ने मुझे वही नजरिया बख्शा था जिसका नतीजा आप सबके सामने है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अपनी बात को मजीद तूल देते हुए चराग ने कहा, एक और मिसाल देते हुए चराग ने कहा, अब हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकी रोशनी हो, जो

0: हमें सुलाए नहीं बल्कि हम में हरकत और हंगामा पैदा कर दे, क्योंकि ज्यादा सोना मौत की अलामत होगा। ये दो जुमले कि जो हमें सुलाए नहीं बल्कि हम में हरकत और हंगामा पैदा कर दे, ये हरकत और हंगामे शायद बहुत पहले सोनाली मैम ने मेरे अंदर पैदा कर दिए थे। इसके साथ ही अपनी बात खत्म करते हुए जय हिंद, वहाँ मौजूद मेहमानान ने माहौल को फिर से गर्मा दिया। चराग की बातें सुनकर मजमे में मौजूद व्हाइट साड़ी में मलाबूस बहुत ही ज़ईफ उम्र खातून ने स्टेज पर आने का इशारा किया। दो तलबा दौड़े चले गए और खातून को आराम से स्टेज पर लाकर बिठाया। उन्होंने माइक पकड़ते हुए कहा, प्यारे बच्चों, अभी आपने IAS ऑफिसर मोहम्मद चिराग की गुफ्तगु सुनी, जिससे आप सभी ये तो बखूबी समझ ही गए होंगे जिस तरह उस्ताद से एक घंटा गुफ्तगु 10 बरस के मताले से बेहतर होती है, ठीक उसी तरह उस्ताद की पटकार भी बड़ी ही कारामद साबित होती है। दरअसल उस्ताद एक जौहरी के मानिंद होता है, वो अपने हर दर्जे के तलबा में से उन तलबा को अपनी हुस्न नजर से एक ही नजर में पहचान लेता है, जिसमें वाकई कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। और मुझे चराग को देखकर ये अंदाजा बहुत पहले ही हो गया था, उस्ताद सिर्फ माजी और हाल से मुस्तकबिल का चराग रोशन करना चाहता है, ताकि उसका तालिबिल इल्म मीनारे नूर बनकर अंधेरों को में भी चराग रोशन कर सके। और चराग से मुखातिब होते हुए सोनाली मैम ने कहा, चराग, तुम हमारे स्कूल के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के वो रोशन चराग हो जिससे कितनी ही तारीख राहें रोशन हो सकती हैं। तभी चराग दौड़कर सोनाली मैम के करीब पहुंच गया और कहा, मैम, वाकई उस्ताद ही वो रोशन चराग है जिससे तारीख ही दूर होती है।
1: रोशन चिराग, अभी आप सुन रहे थे ये अफसाना, अफसाना निगार थी महमूदा कुरैशी। इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम अंजुमन अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अभी ही समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5 बजने को हैं, अब हिंदी में समाचार होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य पुरावशेषों की सफल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुर बस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने के आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। यह पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला

0: अलेक्जेंडर जेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मखोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:05 हुए हैं। श्रोताओं, लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी मत्स्य संपदा योजना के विषय में। वार्ता होगी भारत का जनसांख्यिकी परिदृश्य। वार्ताकार होंगी श्रीजल नगाइच। सेगमेंट नई पहल में आज जानिएगा किसान सारथी प्लेटफॉर्म के विषय में, और वैज्ञानिकी सेगमेंट में लीजिएगा जानकारी सुपरनोवा के विषय में। सेगमेंट ताकत वतन की हमसे है, जिसमें आज जानेंगे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के विषय में। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक शाम 6:00, जिसमें आज चर्चा होगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर। साथ ही होगी वार्ता जिसका विषय होगा आधुनिक कृषि यंत्रों का महत्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश मिश्रा। जानिएगा मंडी भाव और मौसम का हाल, आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी बालिका शिक्षा की आवश्यकता विषय पर। साथ ही होगी कानूनी वार्ता माता पिता और पत्नी के लिए भरण पोषण। वार्ताकार होंगे गोरे लाल। साथ ही होगा आज का प्रश्न ज्ञान सागर, लीजिएगा सेहत टिप्स होगी आज की पाती, और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। शाम 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज सुनेंगे वार्ता हरिशंकर परसाई की साहित्य यात्रा। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सुलक्षणा शर्मा।

श्रोताओं, शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे रात्रि 8 बजे कार्यक्रम महफिले कव्वाली में, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मों से कव्वालियां। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। श्रोताओं, इसके अलावा होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो होगा फरमाइशी फिल्म संगीत, आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम रजनी गंधा। तो याद रखिएगा, रजनीगंधा कार्यक्रम रात्रि 10 बजे। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम करंट अफेयर्स। और श्रोताओं, रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम में। आज आप सुनेंगे रमेश तागड़े से वायलिन वादन, आप प्रस्तुत करेंगे राग बिहाग। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

5:10 हो चुके हैं। वक्त है भक्ति परक फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर संध्या का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना जय संतोषी माँ फिल्म से। आवाजें उषा मंगेशकर और साथियों की, बोल लिखे हैं प्रदीप ने, धुन बनाई है सी अर्जुन ने। तो आइए सुनते हैं जय संतोषी माँ फिल्म से ये भक्ति रचना।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सुर संध्या में। कार्यक्रम में ये अब सुनते हैं जय माँ वैष्णो देवी फिल्म से ये भक्ति रचना, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाजों में। भरत आचार्य की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है अमर उत्पल ने।

श्रोताओं, जय माँ वैष्णो देवी फिल्म से ये गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल और सोनू निगम की आवाजों में। भरत आचार्य की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था अमर उत्पल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का गीत, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में किशन कन्हैया फिल्म से।

श्रोताओ, किशन कन्हैया फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों के स्वर में। बोल लिखी थी इंदिवर ने, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। श्रोताओ, इन भक्त रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है।

नमस्कार प्यारे व साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहां हम करते हैं ढेर सारी बातें और खूब सारा मनोरंजन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा रहे होंगे। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय एक ऐसे नीले सागर से जुड़ा है जो न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, बल्कि हमारे युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य के द्वार भी खोल रहा है। दोस्तों, आज हम सब चाहते हैं कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि नए उद्योग लगें, हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार मिले, किसानों की आय कई गुना बढ़े और हमारे गांव विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि विकास का स्वरूप कैसा होना चाहिए? विकास केवल आज की नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी होना चाहिए, और इसे ही हम कहते हैं सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज भारत सरकार की कई योजनाएं इसी दूरदर्शी सोच पर आधारित हैं, और इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। वैसे अक्सर जब हम मत्स्य संपदा का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में समुद्र, लहरों पर तैरती नाव और मछुआरों की एक पारंपरिक तस्वीर उभरती है। लेकिन आज का मत्स्य पालन केवल एक पारंपरिक व्यवसाय नहीं रहा, ये एक मॉडर्न बिजनेस, एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी और एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन चुका है। भारत के पास नदियों, झीलों, तालाबों और विशाल समुद्री तटों का अद्भुत प्राकृतिक भंडार है। यदि हम इन संसाधनों का वैज्ञानिक, संतुलित और जिम्मेदारी से उपयोग करें तो न केवल मछली का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में नीली क्रांति और ब्लू रेवोल्यूशन को भी गति देना होगा। आज का युवा केवल नौकरी की तलाश में नहीं है, वो जॉब क्रिएटर बनना चाहता है, तो ये योजना युवाओं के लिए उद्यमिता के नए रास्ते खोलती है। यदि आपके पास छोटा सा तालाब है या आप वैज्ञानिक तरीके से फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। दोस्तों, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आधुनिक तकनीक अपनाने, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और संस्थागत सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे छोटे मछुआरों और मत्स्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। आज युवा बायोफ्लॉक और RAS यानी रिसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जैसी तकनीकों को अपनाकर कम जगह में भी मछली पालन कर रहे हैं, वो एक बड़ा बदलाव है। और दोस्तों, मत्स्य पालन का महत्व केवल भोजन तक सीमित नहीं है, ये भारत की फूड सिक्योरिटी, पोषण और एक्सपोर्ट इकोनॉमी का भी एक प्रमुख स्तंभ है। मछली एक सुपर फूड की तरह है, जिसमें उच्च प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो उसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गुणकारी बनाता है। इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना एक सुखद संकेत है। दोस्तों, आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। फिशरीज के क्षेत्र में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, बेहतर फिश फीड, क्वालिटी बीज और कोल्ड चेन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं तेजी से अपनाई जा रही हैं। अब मछली पालन सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों, सरकार केवल योजना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य पालन विभाग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ

निरंतर रिव्यू मीटिंग्स कर रहा है। विशेषकर पूर्वोत्तर या भारत यानी नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां मत्स्य पालन की असीम संभावनाएं हैं। सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी जोर दे रही है ताकि युवाओं को वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन का कौशल मिल सके। अवसर हमेशा बड़े शहरों की ऊंची इमारतों में नहीं होते साथियों, कभी कभी सफलता की राहें हमारे गांव के खेतों, तालाबों और हमारे अपने स्थानीय संसाधनों से होकर निकलती हैं। अब दोस्तों मैं आपके लिए लाई हूँ एक सवाल, तो तैयार हो जाइए मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। विश्व मत्स्य पालन दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? आप सोचिए सवाल का जवाब और लीजिए इस प्यारे से गीत का मजा।

0: दोस्तों, अभी हमने मत्स्य पालन और युवाओं के सपनों की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य यानी डेमोग्राफिक लैंडस्केप इस विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी युवा शक्ति ही हमारा सबसे बड़ा संसाधन है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे एक वार्ता के द्वारा, जिसका विषय है भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य। वार्ताकार हैं श्रेजल नगाइच।
1: नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत न केवल एक भूगोल का हिस्सा है, अपितु यह एक जीवंत जन समूह है, एक धड़कती हुई शक्ति है, और इस शक्ति की सबसे बड़ी पहचान है हमारी जनसंख्या। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, लेकिन न केवल भूगोल के लिहाज से बल्कि जनसंख्या के मामले में भी आज भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2023 में भारत ने चीन को पछाड़ते हुए यह

स्थान प्राप्त किया है। लेकिन वाकई क्या जनसंख्या की संख्या ही मायने रखती है? नहीं, असली मुद्दा है जनसंख्या की उम्र, लिंग अनुपात, शहरीकरण की दर और जनसंख्या की आर्थिक भागीदारी कैसी है। यही बातें मिलकर बनती हैं हमारे देश का जनसांख्यिकी परिदृश्य यानी डेमोग्राफिक सिनेरियो। जनसांख्यिकी को दिशा देने वाले कई कारक हैं और आज के समय में उनमें सुधार की जरूरत है। इसी तरह के कुछ कारकों में से एक है हमारे देश की युवा जनसंख्या। दोस्तों, जहां विश्व के कई बड़े देश अपनी वृद्ध हो रही आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं, भारत को वहीं अक्सर युवा देश के रूप में देखा जाता है। इसका कारण है 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसे हम एक बड़े अवसर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन युवाओं को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार मिले तो यह देश की प्रगति के रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर युवा बेरोजगार और अशिक्षित रह जाते हैं तो यही जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। इसीलिए भारत के लिए यह समय है जनसंख्या की लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही दिशा देने का। इसके अलावा अगर हम कुछ और घटकों की बात करें तो भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन शैली की तलाश में शहरों की ओर आ रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में संसाधनों की कमी, बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ता दबाव भी एक बड़ी चिंता है। झुग्गी झोपड़ियों की बढ़ती संख्या, ट्रैफिक जाम, वायु प्रदूषण और पानी की कमी, यह सभी शहरी जनसंख्या के असंतुलन के परिणाम हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में लिंग अनुपात में भी सुधार की जरूरत है। यदि जनसंख्या की बात करें तो केवल संख्या नहीं, उसमें पुरुष और महिलाओं के अनुपात में भी संतुलन आवश्यक है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में कमी पाई गई थी। हालांकि इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन भ्रूण हत्या, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। सशक्त भारत तभी बन सकता है जब हमारे देश की पूरी जनसंख्या को बराबर के अवसर प्रदान किए जाएं। दोस्तों, भले ही आज भारत एक युवा देश है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दशकों में हमारी बुजुर्ग आबादी बढ़ने वाली है। इसका कारण है देश में प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट में कमी। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि 2050 तक भारत की लगभग 20% जनसंख्या 60 साल के ऊपर की हो सकती है। इसका मतलब है हमें अभी से ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन योजनाओं और बुजुर्गों की देखभाल की नीतियां बनानी होंगी, ताकि हम उनके अनुभव और योगदान को सम्मान पूर्वक संभाल सकें। साथियों, आज के दौर में तकनीक हमारे पास एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरी है। डिजिटल इंडिया, आधार स्वास्थ्य कार्ड और शिक्षा पोर्टल, इन सब की मदद से सरकार अब बेहतर योजनाएं बना सकती है और उन्हें आसानी से जरूरतमंद और हाशिए पर चढ़े हुए समूहों तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 2021 की जनगणना को डिजिटल तरीके से करने की योजना बनाई थी। हालांकि कोविड-19 के कारण यह टल गई, लेकिन भविष्य में डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए डिजिटल तरीके जरूर कारीगर होंगे। दोस्तों, किसी भी देश के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा संसाधन होता है। कोविड-19 ने हमें सिखाया जनसंख्या का दबाव स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर डाल सकता है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी जैसे मुद्दों ने हमें बताया कि केवल जनसंख्या ही नहीं, बल्कि उनके अनुसार संसाधनों का वितरण भी बेहद जरूरी है। यदि हम जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या के संबंध की बात करें तो दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या का असर हमारे पर्यावरण पर भी होता है। हम रोजमर्रा के जीवन में देख रहे हैं कि किस तरह जंगल कटते जा रहे हैं और उन्हें रिहायशी इलाकों में बदला जा रहा है। पानी का स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पूर्ण रूप से जमीनी स्तर का पानी खत्म हो चुका है। ऐसे में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास के रास्ते को अपनाना होगा, जहां मानव संसाधन और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। साथियों, भारत का जनसांख्यिकी परिदृश्य एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने अतीत की

0: परछाइयां वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं तीनों देख सकते हैं। आज के दौर में हमें जरूरत है तो युवाओं को सही दिशा देने की, महिलाएं जो देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है उन्हें समान अवसर देने की, जिससे वे देश की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। इसके अलावा बुजुर्गों को सहारा देने की तथा देश के 21 से 64 उम्र की आबादी के कौशल निर्माण की, जो कि यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि वे अधिक उत्पादक होंगे और देश में अपना अधिक से अधिक योगदान देंगे। इसी के साथ साथ हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा से जीवन जीने का अधिकार देने की भी जरूरत है, क्योंकि जब हम जनसंख्या को बोझ नहीं बल्कि संसाधन समझने लगेंगे तभी भारत वाकई एक सशक्त, समृद्ध, संतुलित तथा निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता हुआ देश बन पाएगा।
1: साथियों, अभी हमने प्रधानमंत्री साथियों भी आपने जाना भारत के जनसंख्या परिदृश्य एक वार्ता के द्वारा, और वार्ताकार थी श्रेजल नगाइच। और उससे पहले हमने बात की थी मत्स्य संपदा योजना के बारे में, जिसके माध्यम से हमने नीली क्रांति के बारे में जाना था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आज के दौर में कृषि का भविष्य स्मार्ट खेती में छिपा है? आज का युवा जब खेती या उससे जुड़े व्यवसायों की ओर बढ़ता है तो उसके पास टेक्नोलॉजी के साथ होना बेहद जरूरी है, और इसी जरूरत को पूरा करता है किसान सारथी प्लेटफॉर्म। अब क्या है किसान सारथी प्लेटफॉर्म? दोस्तों, जुलाई 2021 में शुरू किया गया किसान सारथी भारत का सबसे बड़ा एकीकृत डिजिटल कृषि सलाहकार मंच है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा एक विशेष मिशन के तहत तैयार किया गया था। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो एक किसानों और युवाओं के लिए डिजिटल साथी है, जो खेती से जुड़ी हर समस्या का समाधान एक क्लिक पर कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, किसान सारथी तकनीकी बाधाओं को खत्म करता है। ये 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लाइव संवाद की सुविधा देता है। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हों, आपको अपनी भाषा में खेती की जानकारी मिल ही जाएगी। इसके अलावा ये मंच माई स्कीम, मौसम विज्ञान विभाग और डिजिटल सेवाओं को एक साथ जोड़ता है, जिससे आपको मौसम का अपडेट, सरकारी योजनाओं की जानकारी और मंडी के भाव एक ही ऐप पर या पोर्टल पर मिल जाते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में कृषि अब केवल मेहनत का काम नहीं बल्कि सही जानकारी और तकनीक के साथ की जाने वाली स्मार्ट बिजनेस है। और अभी हमने कृषि और डिजिटल क्रांति की बात की, लेकिन चलिए अब अपनी नजरों को जमीन से हटाकर आसमान की ओर ले चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने सोचा है ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा धमाका क्या होता होगा? अगर वैज्ञानिकों की भाषा में इसे बोलूं तो कहते हैं सुपरनोवा। आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। सुपरनोवा एक तारे का अंत है जो बेहद चमकदार और शक्तिशाली धमाके के साथ होता है। ये ब्रह्मांड में इंसानों द्वारा देखा गया सबसे बड़ा विस्फोट है। एक तारा अपने पूरे जीवन काल में दो ताकतों के बीच संतुलन बनाकर रखता है, अंदर की तरफ खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण की ताकत और कोर से बाहर निकलने वाली दबाव। जब एक विशाल तारे का सारा ईंधन खत्म हो जाता है तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी दूर हो रहे धमाकों का हमसे क्या लेना देना। तो दोस्तों, वैज्ञानिक इन सुपरनोवा को एक स्केल या रूलर की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि अंतरिक्ष की दूरियों को मापा जा सके। और इतना ही नहीं, तारे ब्रह्मांड की असली फैक्ट्रियां हैं, जो तत्व यानी एलिमेंट्स हमारे शरीर और पृथ्वी पर मौजूद हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और सोना। ये सब इन्हीं तारों के भीतर बनते हैं। दोस्तों, सुपरनोवा में सिखाता है कि अंत में भी एक नई शुरुआत छिपी होती है। ये मौत और जीवन के उस चक्र का हिस्सा है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखिएगा कि ऊपर कहीं तारा अपनी चमक बिखेर रहा है, जो शायद आने वाले कल के लिए जीवन के बीज बो रहा है। अब दोस्तों, ने सुपरनोवा के जरिए ब्रह्मांड की विशालता को समझा। अब वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों। अब वापस लौटते हैं अपने देश की उस शक्ति की ओर जो समुद्र की लहरों से जुड़ा है। दोस्तों भारत का मछली और समुद्री भोजन दुनिया के कोने कोने तक कैसे पहुंचता है, कभी आपने इस बात पर गौर फरमाया है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण संस्था है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे हम MPEDA के नाम से जानते हैं। अब क्या है MPEDA? दोस्तों भारत सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और उसे वैश्विक मानकों के यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाना है। ये संस्था केवल मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक एक्सपोर्ट हब की तरह भी काम करती है। दोस्तों आज जब हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो समुद्री निर्यात एक बहुत बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और MPEDA मिलकर भारत को दुनिया का सी फूड हब बना रहे हैं। जहां PMMSY उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देती है, वहीं MPEDA ये सुनिश्चित करता है कि वह उत्पाद सही तरीके से सही कीमत और सही गुणवत्ता के साथ विदेशों तक पहुंचे। इससे विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्जित करने में भी भारत को भारी लाभ होता है। दोस्तों MPEDA का कार्य केवल निर्यात बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत के समुद्री संसाधनों का सही मूल्य दिलाना है। ये संस्था लैब टू लैंड और सी टू एक्सपोर्ट के बीच एक मजबूत कड़ी है। यदि आपके पास साहस है, कुछ नया करने की इच्छा है और आप भारत के समुद्री उत्पादों को पूरी दुनिया में पहुंचाने का सपना देखते हैं, तो MPEDA आपके लिए सफलता का द्वार खोलता है। अब वक्त है आपसे पूछे गए सवाल का जवाब देने का। तो हमने पूछा था आपसे, विश्व मत्स्य पालन दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? तो साथियों ये हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी जवाब के साथ आज मानसून लवर्स के लिए मैं लाई हूँ ये

कार्यक्रम ग्रामीण की चौपाल में बैठकर अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुन रहे सभी भाई बहनों को लोकेंद्र पाठक की राम राम। साथियों, बरसात का मौसम अब धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा है। कहीं हल्की फुहारें पड़ रही हैं, लेकिन कहीं किसान भाई आसमान की ओर देखकर अच्छी बारिश की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। भैया, सभी ओर खेतों में खरीफ की फसल की तैयारियां तेज हो गई हैं। गांव की चौपालों पर भी खेती किसानी की ही चर्चा चल रही है। भैया, इस समय हम किसान बहुत व्यस्त रहते हैं। कोई बीज की व्यवस्था कर रहा है, कोई खेत की आखिरी जुताई में लगा है, तो कोई मेड़ों को मजबूत कर रहा है। भाई, किसान जानता है कि समय पर की गई तैयारी अच्छी फसल के लिए कितनी आवश्यक होती है। मित्रों, आज राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है। ये दिन उन मेहनती मत्स्य पालकों को समर्पित है, मछली पालकों को समर्पित है, जो तालाबों और जलाशयों के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा और हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। और भैया, काम करने के बाद किसान की जेब में जब पैसा आता है ना, तो पूरा परिवार खुश हो जाता है। हमारे बच्चों का भविष्य संवरने लग जाता है। बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, अच्छे संस्कार सीखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब किसी बच्चे के सिर से माता पिता का साया उठ जाता है। मित्रों, ऐसे बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो, उनकी पढ़ाई ना रुके, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे, इसी सोच के साथ सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसी पहल की है, जिससे कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को शिक्षा, पालन पोषण और भविष्य की राह में आवश्यक सहयोग मिलता रहे। साथ ही योजना का उद्देश्य केवल पैसों का सहयोग देना नहीं है, बल्कि बच्चों को ये विश्वास दिलाना है कि भैया, आप अकेले नहीं हो, वो अकेले नहीं है, समाज उनके साथ खड़ा है, सरकार उनके साथ खड़ी है। साथियों, जब किसी बच्चे की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रहती है, उसे अच्छा वातावरण मिलता है और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तब उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस योजना का लाभ किन बच्चों को मिल सकता है, तो जान लीजिए कि ये योजना हमारे राज्य के ऐसे पात्र बच्चों के लिए है जिनके ऊपर से अपने माता पिता, माता या पिता अथवा वैध अभिभावक का साया उठ चुका हो। सामान्य रूप से 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 18 वर्ष से बड़े युवाओं को भी शामिल किया जा सकता है। जैसे भैया जैसे कि कोई उच्च शिक्षा ले रहा हो, हायर एजुकेशन कर रहा हो, या कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। व्यावसायिक शिक्षा से मतलब है कि जो रोजगार पाने के लिए आजकल सरकार जो अलग अलग योजनाएं चलाती हैं, शिक्षा चलाती हैं, उस तरह की कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो और योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करता हो, तो ऐसा बालक, ऐसे युवा 18 वर्ष से बड़े होने पर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पात्र बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए प्रतिमा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये राशि बच्चे के हित में उसके अभिभावक या वैध संरक्षक के माध्यम से उपयोग की जाती है, ताकि बच्चे की पढ़ाई और दैनिक आवश्यकताओं में कोई भी बाधा ना आए। आज के समय में कंप्यूटर की पढ़ाई कितनी जरूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए मित्रों, सबसे अच्छी बात यह है कि कक्षा 9 या उससे ऊपर पढ़ने वाले पात्र बच्चों को लैपटॉप भी दिया जाता है। बालिकाओं को वयस्क होने पर विवाह के लिए 1,01,000

हजार की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। मित्रों, यदि आपके गांव में कोई बच्चा इस योजना का पात्र हो तो उसके अभिभावक या संरक्षक जिला प्रवेशन अधिकारी महिला कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं या निकट के जनसेवा केंद्र भी जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आवेदन कैसे करना है और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी क्या है। मतलब वो सारी जानकारी जो है आपको जनसेवा केंद्र संचालक जो होंगे वो दे देंगे। सही समय पर मिली जानकारी किसी बच्चे का भविष्य संवार सकती है, इसलिए आप यदि संभव हो तो आसपास ऐसे किसी भी बच्चे को इस योजना की जानकारी दें जिससे वो इस योजना का लाभ ले सके। बच्चा यदि समझदार ना हो तो उसके अभिभावक जो हैं उनको आप ये जानकारी दे सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम हमारा यूं ही चलता रहेगा, लेकिन मौसम सुहाना हो रहा है, ये और सुहाना हो जाएगा जब हम सुनेंगे लोकगीत। तो आइए भूपेंद्र सिंह लोधी के शुरू में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अभी हमारे खेतों में खरीफ की बुआई का समय चल रहा है। ऐसे में आधुनिक कृषि यंत्र जैसे सीड ड्रिल, रोटावेटर और मल्टी क्रॉप प्लांटर से बुआई समय पर और समान दूरी पर की जा सकती है। इससे फसल की अच्छी बढ़वार होती है।

0: मित्रों, आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, लागत भी कम होती है और किसान कम समय में अधिक क्षेत्र में खेती का काम पूरा कर सकता है। आइए डॉक्टर दिनेश मिश्रा से जानते हैं कि आज की खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का क्या महत्व है।
1: आजकल कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह भी देखा गया है कि कृषकों के खेत का आकार भी दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है, अतः आवश्यकता है कि खेतों में अधिक से अधिक फसलें उगाई जाएं तथा समय से व प्रभावी ढंग से सभी कृषि कार्यों को किया जाए। आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से कृषि कार्यों को प्रभावी ढंग से व समय से किया जा सकता है। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में कई अनुसंधान हुए तथा आवश्यकता के अनुसार सुधार होते होते अब कई प्रभावी आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जिनके प्रयोगों से कृषकों को काफी लाभ हो रहा है। कुछ कृषि यंत्रों को अपने पास रखा जाता है तथा कुछ कृषकों द्वारा किराए पर कृषि यंत्रों से कृषि कार्यों को कराया जाता है। अपने पास कृषि यंत्रों को रखने का सबसे बड़ा लाभ कृषि कार्यों को समय से पूरा किए जाने का होता है। किराए पर कृषि यंत्रों को लेने से कभी कभी कृषि कार्यों को समय से करने में कठिनाई आती है, क्योंकि जब आवश्यकता होती है तो अक्सर कृषि यंत्र किराए हेतु खाली नहीं रहते हैं तथा समय से कृषि कार्य नहीं हो पाता है। कृषक भाइयों द्वारा अधिकतर जुताई हेतु हैरो व कल्टीवेटर का सीधे प्रयोग किया जाता है। हैरो व कल्टीवेटर के प्रयोग से 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक ही जुताई हो पाती है। बार बार 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक जुताई करने से इसके नीचे की मिट्टी सख्त होने लगती है तथा कुछ समय उपरांत कड़ी परत में परिवर्तित हो जाती है। नीचे की मिट्टी के सख्त व कड़े हो जाने से जड़ों का विकास रुक जाता है तथा पूरा उत्पादन नहीं मिलता है। यह भी देखा गया है, खाद को ऊपरी परत पर बिखेरने या मिलाने से पौधों की निचली जड़ों को खाद नहीं मिल पाता है, अतः आवश्यकता है 25 सेंटीमीटर से अधिक गहरी जुताई की जाए तथा खाद को निचली परत में देने की भी व्यवस्था की जाए, जिससे पौधों की निचली जड़ों को भी पर्याप्त पोषण मिले तथा पौधों का पूरा विकास हो तथा उत्पादन बढ़कर मिले। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंथ ICAR सब सॉयलर कम डिफरेंशियल रेट फर्टिलाइजर एप्लीकेटर नामक यंत्र है, जो 25 से 45 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई के साथ साथ दो गहराई 15 से 25 सेंटीमीटर तथा 35 से 45 सेंटीमीटर की गहराई पर खाद डालता है। यह यंत्र ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। खेतों को प्रभावी रूप से समतल करने के लिए ट्रैक्टर चलित लेजर लेवलर का प्रयोग किया जाता है। लेजर लेवलर के मुख्य भाग लेजर संप्रेषक, लेजर ग्राही व ब्लेड तथा नियंत्रण बॉक्स होते हैं। लेजर संप्रेषक चारों तरफ किरणें निकालता है। इन्हीं किरणों के स्तर पर खेत समतल होता है। लेजर ग्राही ब्लेड के ऊपर लगा रहता है। लेजर ग्राही लेजर संप्रेषक द्वारा भेजी गई किरणों को प्राप्त कर नियंत्रण बॉक्स को सूचना देता है, जिससे नियंत्रण बॉक्स अपना कार्य करता है। जिस सतह पर समतल करना होता है उसकी सूचना नियंत्रण बॉक्स में निर्धारित कर दी जाती है। यह हाइड्रोलिक यूनिट को चलाता है। समतल खेत से लगभग 25% पानी की बचत तथा 30% उत्पादन अधिक मिलता है। मक्का, गेहूं, चना, मूंग, सरसों, अरहर, सोयाबीन, मूंग आदि को बोने के लिए ट्रैक्टर चलित मल्टी क्रॉप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। बिखेर कर बोने की तुलना में इससे बोने से 10-15% बीज व खाद की बचत तथा 15% उत्पादन बढ़कर मिलता है। इस यंत्र की क्षमता 9 कतार हेतु 0.35 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। धान के बाद गेहूं को बिना जुताई के बोने के लिए ट्रैक्टर चलित जीरो टिलेज कम्फर्टी ड्रिल नामक यंत्र उपलब्ध है। इस यंत्र के प्रयोग से समय से गेहूं की बुआई होती है। लगभग 10% उत्पादन अधिक मिलता है तथा 20% खर्चा कम आता है। इसकी क्षमता 0.33 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। गेहूं, चना, मटर, मूंग, अरहर आदि को मेड़ पर बोने के लिए ट्रैक्टर चलित मल्टी क्रॉप रेज बेड प्लांटर का प्रयोग किया जाता है। इससे आवश्यकता अनुसार उचित दूरी पर दो मेड़ बनाई जाती है। प्रत्येक मेड़ पर फसलों के अनुसार 1, 2 व 3 कतार में बुआई की जाती है। इसकी क्षमता 0.25

0: हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। फसलों को मेड़ पर बोने में लगभग 40% पानी की बचत होती है। प्रत्येक पौधे को पर्याप्त प्रकाश मिलने से उत्पादन अधिक मिलता है। धान की रोपाई हेतु मानव चलित व स्वचलित धान रोपाई यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मैट टाइप नर्सरी का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों के प्रयोग से मजदूरों की बचत के साथ साथ प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में गूलों की हिल्स की पर्याप्त संख्या मिल जाती है। इससे पूरा उत्पादन मिलता है। मैट टाइम नर्सरी हेतु 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। रोपाई के दौरान 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। 40 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मानव चलित पैडी ट्रांसप्लांटर 6 कतार की क्षमता 0.05 हेक्टेयर प्रति घंटा तथा स्वचलित पैडी ट्रांसप्लांटर 8 कतार की क्षमता 0.15 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। धान की नर्सरी तैयार न होने पर पडलिंग किए हुए खेत में मानव चलित पैडी सीडर 8 कतार का प्रयोग करके अंकुरित धान की बुआई की जाती है। इसकी क्षमता 0.08 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। धान की निराई हेतु एक प्रभावी मानव चलित यंत्र कोनो वीडर है। निराई के साथ साथ इसके प्रयोग के बाद धान का खेत पानी कम पीता है। पानी में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में घुल जाती है। पौधों में कल्ले भी अधिक निकलते हैं। इस यंत्र की क्षमता 0.02 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। इसके प्रयोग से परंपरागत खुरपी से 58% कम खर्चा आता है। गेहूं की कटाई हेतु रीपर बाइंडर नामक यंत्र काफी प्रचलित है। इससे 1 घंटे में 0.4 हेक्टेयर खेत काटकर बांधा जा सकता है। दरांती की कटाई की तुलना में खेत बहुत जल्दी कट जाता है तथा सस्ता भी पड़ता है। गिरे हुए फसलों को काटने के लिए उल्टी दिशा से मशीन को नाला पड़ता है। यह स्वचलित यंत्र है। इसमें 12 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा होता है। इससे कटे हुए फसल से भूसा भी प्राप्त हो जाता है। यूरिया को ठीक से खेत में बिखेरने के लिए मानव चलित फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यूरिया एक समान रूप से पूरे खेत में इससे लगाया जा सकता है। इसकी क्षमता 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है तथा हाथ से यूरिया बिखेरने की तुलना में इसमें 30% कम खर्चा आता है। मूंगफली को बोने के लिए कृषकों को मूंगफली को नुकाने की ज्यादा आवश्यकता होती है। हाथ से नुकाने से काफी समय लगता है। नुकाई के कार्य को आसानी से मानव चलित ग्राउंड नट डिकॉर्टिकेटर के प्रयोग से किया जा सकता है। इसकी क्षमता 65 किलोग्राम प्रति घंटा होती है। इससे नुकाने से हाथ से नुकाने की तुलना में 62% कम खर्चा होता है। अतः कृषक भाई आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: मित्रों, अभी हमने डॉक्टर दिनेश मिश्रा से ये जाना कि आज की खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का क्या महत्व है। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: साथियों, खेती में लाभ तभी मिलता है जब हम जागरूक रहते हैं। खेती में नए आधुनिक उपकरण और नई किस्में क्या क्या चल रही हैं उनका प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं एक नई किस्म के बारे में। साथियों, खरीफ की बुआई के लिए किसान भाई बाजरा की उन्नत किस्म HHB 299 की खेती पर भी विचार कर सकते हैं। ये किस्म अच्छी उपज देने के साथ कई परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए भी जानी जाती है। यदि प्रमाणित बीज का उपयोग किया जाए और समय पर बुआई की जाए तो यह किस्म किसानों के लिए अच्छी पैदावार दिलाने में सहायक हो सकती है। चलिए साथियों, इसी के साथ जान लेते हैं आगरा का मौसम भाव, मौसम की जानकारी। तो आगरा के मौसम की जानकारी में हम जान लेते हैं विगत 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का

अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और आसमान में हल्के बादल छाते रहे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। आगामी 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब साथियों, हमारी चौपाल की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आपके सुरों की चौपाल भी लगनी चाहिए, ये हमें पता है। तो आइए कृष्ण गोपाल शर्मा के मधुर आवाज में सुनते हैं ये लोकगीत।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, दिन भर की मेहनत के बाद परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे। साथियों, हम सभी अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं ताकि बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर बन सके। हर माता पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन कई बार देखा जाता है कि घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से सबसे पहले बेटी की पढ़ाई पर असर पड़ता है। पर हमें ये सोच बदलने की ज़रूरत है। आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। शिक्षा ही वह शक्ति है जो उन्हें आत्मविश्वासी बनाता है और अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस देता है। एक पढ़ी लिखी बेटी अपने अधिकारों को समझती है, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, सही फैसले लेती है और ज़रूरत पड़ने पर परिवार की आर्थिक मदद भी करती है। हमारे श्रमिक साथी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर बेटियों की पढ़ाई को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना बेटों की पढ़ाई को दिया जाता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ सकता है। याद रखिए, बेटी की पढ़ाई कोई खर्च नहीं बल्कि भविष्य के लिए सबसे बड़ा निवेश है। बेटियां शादी के बाद दूसरे घर चली जाएंगी, वहां अपने ज्ञान, संस्कार और समझदारी से दो परिवारों का सम्मान बढ़ाएंगी। वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देगी। इस तरह एक शिक्षित बेटी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बेहतर बनाएगी। आज सरकार भी बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसका लाभ उठाकर श्रमिक परिवार अपनी बेटियों की पढ़ाई बिना किसी झिझक के जारी रख सकते हैं। अगर आर्थिक कठिनाई आए तब भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि बेटी की पढ़ाई बीच में ना रुके। साथियों, बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं। दोनों को सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का पूरा अधिकार है। अगर हम अपनी बेटियों को शिक्षा का अवसर देंगे तो वो न केवल अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएंगी बल्कि पूरे परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने घर की हर बेटी को पढ़ने का पूरा अवसर देंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसके सपनों को उड़ान देंगे, क्योंकि शिक्षित बेटी ही सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त भारत की सबसे मजबूत नींव है। साथियों, वक्त है आज के प्रश्न का, तो आइए जान लेते हैं आज का प्रश्न। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी और इसके क्या उद्देश्य है? और इसी के साथ अब वक्त है मनोरंजन का, तो आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

साथियों, ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जिसका संबंध देश के हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। साथियों, कहते हैं कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी शिक्षा को हर

0: बच्चे तक पहुंचाने के लिए हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का यानी 21A, जिसके अनुसार 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसे वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन RTE अधिनियम लागू हुआ। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी या किसी दूसरे कारण के चलते कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। खासकर श्रमिक परिवारों के लिए यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जो आने वाली पीढ़ी को बेहतर अवसर और सम्मानजनक जीवन दे सकती है। साथियों, केवल बच्चों की शिक्षा ही नहीं बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों की रक्षा करना हम सभी और हमारी कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी है। जिस प्रकार संविधान बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा करता है, उसी तरह कानून हमारे माता पिता, पत्नी और आश्रित परिजनों के भरण पोषण का भी प्रावधान देता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस वार्ता के जरिए। वार्ता का विषय है माता पिता और पत्नी के लिए भरण पोषण कानून। वार्ताकार हैं घूरेलाल।
1: माता पिता एवं पत्नी का भरण पोषण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति परिश्रम करता है और आयु के अनुसार ही घर परिवार को चलाता है, लेकिन कई बार आपसी टकराव और मुकदमेबाजी के कारण परिवार का कोई सदस्य दूसरे सदस्य के भरण पोषण से मना कर देता है। ऐसे में पुलिस और न्यायालय ही एकमात्र सहारा होते हैं, जिनकी मदद से जीवन यापन के लिए समुचित धन और दूसरी सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। भारत सरकार ने बहुत से ऐसे कानून पारित किए हैं जिनके तहत माता पिता, पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्य भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इन कानूनों में प्रमुख हैं दंड प्रक्रिया संहिता, हिंदू भरण पोषण एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, वृद्ध माता पिता का भरण पोषण अधिनियम आदि। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत माता पिता एवं पत्नी अपने भरण पोषण प्राप्त करने के लिए दीवानी न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है। प्रत्येक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वृद्ध माता पिता एवं पत्नी के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। न्यायालय को भरण पोषण का भत्ता निश्चित करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि जिन माता पिता एवं पत्नी बच्चों के प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तब न्यायालय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ये आदेश देता है कि वह अपने वृद्ध माता पिता एवं पत्नी बच्चों के भरण पोषण के लिए भत्ता दे, तथा न्यायालय को यह भी देखना होता है कि प्रत्येक माह कितना भत्ता दिया जाए। यह उस व्यक्ति की आयु और संपत्ति पर निर्भर करता है। अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार है, लेकिन पत्नी को यह मालूम हो जावे कि पति अपने साथ दूसरी पत्नी रख रहा है, तो पत्नी पति के अलग रहकर भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, माता पिता एवं बच्चों को भरण पोषण देने से बचने के लिए जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, तो न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है और भत्ते की धनराशि अदा न करने पर सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता एवं पत्नी बच्चों के साथ जार कर्म करता है, तो वृद्ध माता पिता एवं पत्नी अलग रहकर भरण पोषण की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति माता पिता एवं पत्नी के साथ मारपीट करता है, घर से बाहर निकाल देता है या घर से निकालने को विवश कर देता है, तो उस व्यक्ति के साथ रहने से इनकार कर बाद भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। हिंदू विधि अधिनियम 1956 के अनुसार भरण पोषण हिंदू विधि के अनुसार जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने वृद्ध माता पिता एवं पत्नी बच्चों के भरण पोषण अपनी आयु के अनुसार करे। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू पत्नी विवाह के बाद अपने पति अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार होती हैं। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत हिंदू पत्नी अपने पति से भरण पोषण अलग रहकर भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती करने के अधिकारी हैं। उनका पति

0: क्रूरता का व्यवहार करता है, पत्नी कुष्ठ रोग से पीड़ित है और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ऐसी स्थिति में हिंदू दत्तक पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत वृद्ध माता पिता एवं बच्चे भी आते हैं जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत वृद्ध माता पिता पत्नी के अलावा विधवा पत्नी जब तक वह पुनर्विवाह न कर ले, पुत्र पुत्र का पुत्र भी पिता की संपत्ति में से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भरण पोषण ऐसी महिलाएं जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, ऐसी पीड़ित महिलाओं दीवान न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं। जो पति पत्नी के रूप में एक घर में निवास कर चुके होते हैं तब उस पति का यह अधिकार होता बनता है कि वह अपनी पत्नी को भरण पोषण की व्यवस्था करे तथा पत्नी के साथ जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का भी प्रावधान दिया गया है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक और कल्याण विधेयक 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को पेश किया गया था, जिसमें कहा गया कि वयस्क संतानों को अपने वृद्ध माता पिता दादा दादी का भरण पोषण के साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही भरण पोषण समुचित भोजन कपड़ा आवास एवं उनकी बीमारी की व्यवस्था करनी होगी। वर्तमान विधि में आश्रित बालक हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण दंड प्रक्रिया संहिता पर आधारित है जो वृद्ध माता पिता को प्रतिमा 500 रुपये देने का प्रावधान करती है, लेकिन ये अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को मासिक भत्ता 10,000 रुपये का प्रावधान करती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को भुगतान नहीं करती है वह व्यक्ति 3 माह के कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत माता पिता या दादी दादा अपनी संतानों में से एक या अधिक के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिक उस संबंधी के विरुद्ध भी प्रवाद दायर कर सकते हैं जिसे उसकी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। वरिष्ठ माता पिता निम्न के भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, संतान माता पिता उन संबंधियों से जो उन संपत्ति पर उत्तराधिकारी हैं। अगर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो बीच में आपस में राजीनामा का भी प्रावधान किया गया है। भरण पोषण की धनराशि का भुगतान न करने पर 1 मास की सजा हो सकती है और घर से निकाल देने पर 3 माह की सजा हो सकती है। प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था गृह सरकारी आवासों में वृद्धों की देखभाल, वृद्धों को प्राण और स्वतंत्रता की संरक्षण अधिनियम करने हेतु पुलिस की साथ व्यवस्था की गई है, लेकिन संयुक्त परिवार प्रणाली में टूट फूट के कारण वृद्धों की व्यापक संख्या का उनके परिवार द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप तमाम वृद्ध व्यक्ति विधवाएं अपने अंतिम समय को अकेले व्यतीत करने को बात हो रही हैं।
1: साथियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता माता पिता और पत्नी के लिए भरण पोषण कानून। वार्ताकार थे घूरेलाल। अब वक्त है अंतराल का।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान

0: कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: साथियों, आपको आज का प्रश्न तो याद है ना? आज का प्रश्न था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म और अस्तित्व की रक्षा करना है, घटते बाल लिंगानुपात में सुधार लाना, हर बेटी को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराना, समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और समानता की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। देश भर में स्कूलों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा दिया जा रहा है, पढ़ाई बीच में ना छूटे इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से बेटियों के उज्जवल भविष्य को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर साथियों, इस अभियान की सफलता केवल सरकार पर नहीं बल्कि समाज और हर परिवार की सोच पर भी निर्भर करती है। याद रखिए, बेटी को बचाना ही नहीं, उसे पढ़ाना, सम्मान देना और आत्मनिर्भर बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुलाई का महीना है, बारिश के मौसम में कभी तेज़ धूप तो कभी उमस और कभी तेज़ बारिश, ऐसे में हमारा शरीर जल्दी थक जाता है। इस थकान को दूर करने के लिए आप एक गिलास पानी में नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं, चाहे तो आप स्वादानुसार थोड़ा नमक और चीनी भी मिला सकते हैं। इससे शरीर को ताजगी तो मिलेगी ही, साथ ही पसीने के साथ निकलने वाले कुछ आवश्यक लवणों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं अगर आंवला उपलब्ध हो तो इसे किसी भी रूप में, जैसे ताज़ा आंवला या मुरब्बा या बिना चीनी वाला आंवला उत्पाद सीमित मात्रा में ले सकते हैं। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है जो शरीर को की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायक माना जाता है। पर साथियों, अगर आप में से किसी को भी मधुमेह, किडनी की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर और या फिर डॉक्टर ने आपको खान पान के लिए कुछ विशेष सलाह दी हो तो उसी के अनुसार इन चीज़ों का सेवन करें। देखिए, हमारी ये छोटी छोटी आदतें हमें स्वस्थ रखने में हमारी बहुत मदद करती हैं। साथियों, जब दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मन और शरीर दोनों थक जाते हैं तब कुछ पल अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे समय में संगीत एक ऐसा साथी बन जाता है जो थकान को कम कर देता है और मन में नई ऊर्जा भर देता है। आज हमें एक श्रमिक भाई का संदेश मिला। उन्होंने लिखा कि वो रोज़ सुबह अपने परिवार की खुशियों के लिए काम पर निकलते हैं। दिन भर की भागदौड़ और मेहनत के बीच जब भी उन्हें अपने बच्चों और परिवार की याद आती है तो एक प्यारा सा गीत उनके चेहरे की मुस्कान बन जाती है। उन्होंने ये गीत अपने परिवार के साथ साथ सभी मेहनतकश साथियों को भी समर्पित किया है। तो आइए उनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, विदा लेने का समय हो गया है, पर एक छोटी सी अपील आप सभी से करना चाहूंगी। बारिश में वाहन धीरे चलाएं और पेड़ या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें, क्योंकि तेज हवा और बारिश में बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाता है। और साथियों, इंसानियत का एक और फर्ज भी याद रखें, बारिश में बेजुबान पशु पक्षी भी सुरक्षित जगह की तलाश में भटकते हैं। उन्हें मारे नहीं, अगर संभव हो तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर थोड़ी सी शरण दें, पीने के लिए साफ पानी और थोड़ा खाना दें। आपकी ये छोटी सी संवेदनशीलता किसी के जीवन के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। और साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त है, तो जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अनुमति दीजिए अपनी रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल, मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने

और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल

0: ये सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland, Prime Minister Modi was received at the airport by the New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. During his visit, the two leaders are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between India and New Zealand. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. Earlier, Prime Minister Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced the diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. Prime Minister Modi has expressed gratitude to the government and people of Australia, as well as Australian Prime Minister Anthony Albanese, for their warm hospitality during his visit.

0: External Affairs Minister Dr. Jay Shankar today interacted with members of the Indian diaspora in Oman. In a social media post, Dr. Jay Shankar said their enthusiasm in strengthening India-Oman relations is palpable. He appreciated the Indian diaspora's contributions to the society as well as to India-Oman partnership. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan today reviewed the preparations for the upcoming monsoon session in the Parliament House complex. The session of the Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. The Supreme Court will hear a batch of pleas seeking a fair and time-bound probe into the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya on Monday. On 7th of July, an Ayodhya court granted one-day police remand for three of the eight accused arrested in connection with the alleged theft of donations at the Ram Temple. A local court had sent all the eight accused to a 14-day judicial custody on the 29th of last month. The Indian Railways has approved 206 crore rupees for Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes. The Railway Ministry said the provision of Kavach version 4.0 will be implemented on the Rewari Delhi and Shakur Basti Bhatinda sections of the Delhi Division. Operation Amistad has concluded successfully with the return of the Indian contingent to New Delhi from Venezuela today. The Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission was launched following the recent earthquakes in Venezuela. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, thanked the Prime Minister for the timely help, support and solidarity extended by India. External Affairs Ministry said in a statement that on 26th of June, two Indian Air Force C-17 Globemaster third aircraft carried a 41-member contingent from the Indian Army's 60-para field hospital unit to Venezuela. Sebastian Robert, a former director of All India Radio News and an officer of Indian Information Service, passed away in New Delhi today after a brief illness. He was 80. Mr. Robert was associated with AIR News for several decades and had made his mark as an ace correspondent in the field of defense and external affairs, covering important events in India and abroad. In women's cricket, India were 170 for 3 in their first innings against England in one-off test match at the iconic Lord's Cricket Ground when reports last came in. Earlier, England won the toss and opted to field. This match is a landmark occasion for Lord's as it is the first women's test match to have been played at the ground. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम विविधा का। कार्यक्रम विविधा में आइए सुनते हैं वार्ता हरी शंकर परसाई की साहित्य यात्रा। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुलक्षणा शर्मा। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये वार्ता हरी शंकर परसाई की साहित्य यात्रा।
2: हरिशंकर परसाई का व्यक्तित्व परिचय का मोहताज नहीं। उन्होंने जबलपुर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। जब 1947 ईस्वी से 1983 तक की उनकी साहित्य यात्रा 6 भागों परसाई रचनावली के नाम से छपी, तब पता चला कि उन्होंने कितना साहित्य रचा। उन्होंने हिंदी साहित्य की झोली में कहानियां, लघु उपन्यास, व्यंग निबंध, टिप्पणियां, पत्र साहित्य की सहस्रों रचनाएं देकर भर दिया। इस परसाई रचनावली की महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने में इसके संपादक मंडल में रहे साहित्यकारों में कमला प्रसाद, धनंजय वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र, मलय और श्याम कश्यप जैसे दिग्गज रहे हैं। इसके पहले खंड में परसाई जी की लघु कथात्मक व्यंग रचनाएं संकलित की गई है। द्वितीय खंड में तट की खोज, ज्वाला और जल और रानी नागफनी की कहानी दी गई है। इनमें से रानी नागफनी की कहानी 1962 रचनावली के 90 पृष्ठों में पसरा पड़ा एक लघु उपन्यास है, जिसे परसाई जी ने फंतासी के रूप रंग में ढालकर रचा है। तट की खोज 1955 35 पृष्ठों में घिरी एक दीर्घ कथा है। इस खंड में सुपरमैन से रामजीदास, रामजी दादा 144 कहानियां और बदचलन से पद पूजन तक 77 लघु कथाएं संकलित हैं। इसी खंड के प्रारंभ

0: में संपादक मंडल के कश्यप का एक आलेख गद्य लेखक हरिशंकर परसाई शीर्षक से दिया गया है। इस खंड की लघु कथाओं में से सबसे छोटी लघु कथा नई धारा को प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ। उस दिन एक कहानीकार मिले, कहने लगे बिल्कुल नई कहानी लिखी है, बिल्कुल नई शैली, नया विचार, नई धारा। हमने कहा क्या शीर्षक है? वे बोले चांद सितारे, अजगर, सांप, बिच्छू, झील। परसाई रचनावली खंड 2 पृष्ठ 378। परसाई रचनावली के खंड 3 राम का दुख और मेरा से लेकर डेंगू, अध्यात्म और लेखक 95 निबंध संकलित हैं। इसी खंड में कल्पना पत्रिका हैदराबाद के संपादकों को लिखे गए 34 पत्रात्मक निबंध भी संकलित हैं। इसके संपादक मंडल में से एक कमला प्रसाद का एक आलेख हरिशंकर परसाई की निबंध कला शीर्षक से दिया गया है। उन्होंने लिखा है, यथार्थ से लेखक, लेखक से रचना, रचना से पाठक और पाठक से यथार्थ के रिश्तों का इतना विश्वसनीय वृत्त अन्यत्र नहीं बनता। परसाई रचनावली 3 पृष्ठ 1। परसाई रचनावली के खंड 4 में परसाई जी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को लक्षित अपील का जादू से लेकर गर्दिश के दिन तक 166 रचनाएं संकलित हैं। इसी खंड में संपादक मंडल में से एक श्याम सुंदर मिश्र का 10 अक्टूबर 1983 को लिखा एक आलेख भी परसाई की वैज्ञानिक जीवन दृष्टि और व्यापक यथार्थ शीर्षक से दिया है। उन्होंने लिखा, सचमुच परसाई का रचना क्षेत्र बहुत व्यापक है। परसाई रचनावली खंड 4 पृष्ठ 3। इस रचनावली के खंड 5 में सुनो भाई साधु और माजरा क्या है शीर्षक से जो स्तंभ लिखते थे उसे संकलित किया गया है। नवीन दुनिया जबलपुर 59 जो बाद में नई दुनिया नाम से निकलता था, परसाई जी उसमें सुनो भाई साधु शीर्षक स्तंभ कबीर के नाम से 1957 से ही लिख रहे थे। जनयुग नई दिल्ली में 1965 ईस्वी से ही वे आदम नाम से माजरा क्या है शीर्षक स्तंभ लिख रहे थे। इस खंड में सुनो भाई साधु शीर्षक के अंतर्गत लिखी गई नया खून पुराना खून से लेकर विमान वहां गया तो क्यों गया शीर्षक से 167 रचनाएं संकलित है और ये माजरा क्या है शीर्षक से दी गई 81 रचनाएं संकलित है। इसी खंड के प्रारंभ में डॉक्टर धनंजय वर्मा का एक आलेख परसाई के कॉलम साहित्य के एक नए सौंदर्य शास्त्र की जरूरत का एहसास शीर्षक से दिया गया है। इस खंड में भूमिका स्वरूप संपादक मंडल की ओर से कहा गया है, स्तंभ परसाई जी का बहुत महत्वपूर्ण लेखन है। परसाई रचनावली के 6 खंड में उनके प्रारंभिक लेख कहानियां निबंध पुस्तकों की भूमिकाएं संपादकीय आलेख साक्षात्कार व्याख्यान तथा रिटायर्ड भगवान की कथा नाम से उपन्यास अंश संकलित हैं। अरस्तु की 17 चिट्ठी कबीरा खड़ा बाजार शीर्षक से 17 काल्पनिक भेंट वार्ताएं और 23 वसुधा के संपादकीय संकलित हैं। परसाई रचनावली के 6 खंड में संपादक मंडल में से एक मलाइका जिंदगी के अकाल की मुखालफत में परसाई की रीति और रुतबा शीर्षक एक आलेख भी दिया हुआ है। उन्होंने लिखा है, आरंभ में यह समझ लेना आवश्यक है कि परसाई केवल एक लेखक नहीं वे एक आंदोलन भी हैं। कहना न होगा कि परसाई जी छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, लेखक संगठन, सांप्रदायिक एकता आंदोलन, विश्व शांति आंदोलन, भारत रूस मैत्री संघ जैसी संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े थे। निष्कर्ष ये कि वे जबलपुर के साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के प्राण थे। 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1982 में ही उन्हें जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। परसाई ने अपनी साहित्य यात्रा का प्रारंभ 1947 से ही कर दिया था। उनकी 20 पुस्तकों में हंसते हैं रोते हैं 1951 तब की बात और थी 1956 भूत के पांव पीछे 1961 जैसे उनके दिन फिरे 1964 बेईमानी की परत 1965 सुनो भाई साधु 1965 पगडंडियों का जमाना 1966 सदाचार का ताबीज 1967 नेठल्ले की डायरी 1968 उल्टी सीधी 1968 और अंत में 1968 शिकायत मुझे भी है 1970 ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 तिरछी रेखाएं 1972 वैष्णव की फिसलन 1976 आदि उल्लेखनीय है। उनके समूचे लेखन का उद्देश्य था, मैं सुधारने के लिए नहीं बदलने के लिए लिखना चाहता हूँ यानी कोशिश करता हूँ सदाचार का ताबीज पृष्ठ 11। इसीलिए डॉक्टर आनंद गौतम को यह समीक्षात्मक टिप्पणी देनी पड़ी, समकालीन हिंदी व्यंग निबंधकारों में परसाई शीर्षस्थ हैं। उनका व्यंग केवल देश की अधनातन स्थितियों परिस्थितियों तथा विसंगतियों का पर्दाफाशी नहीं करता अपितु पाठक की मन चेतना को झकझोर कर परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए उन्हें प्रेरित भी करता है। हिंदी के व्यंग निबंध पृष्ठ 96।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे।

वार्ता हरिशंकर परसाई की साहित्य यात्रा। वार्ताकार थी डॉक्टर सुलक्षणा शर्मा।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत

0: समन्वय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु यहां का विकास देखकर अभिभूत होकर जाते हैं।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचितागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक आदर्श मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भद्रेश्वरनाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी आगे बढ़ाया जाएगा।
1: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा, इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
0: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती के काम में लगे 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी करनी होगी। इसके साथ ही छुट्टियों में भी बदलाव किया गया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद अब दान राशि की गिनती के लिए 13 कर्मचारी शेष बचे हैं। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों को पुलिस से सत्यापित कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा और बिना जेब वाली विशेष ड्रेस पहनकर काम करना होगा, जिससे दान राशि की निगरानी और पारदर्शिता बनाई जा सके। मामले की जांच कर रही पुलिस की विशेष टीम जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और नई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री मिश्र कल राम कथा संग्रहालय में निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में ट्रस्ट के नव नियुक्त अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन पहली बार आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की सीबीआई जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। स्थानीय अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट का वितरण और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर देश का गौरव बढ़ाएं। प्रदेश भर में कल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
1: सारे ब्लॉकों में जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही भारी बारिश से हो रही जनहानि पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को कल भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज और पश्चिमी जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगामी 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान जताया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव के मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:31 हुए हैं। श्रोताओं, ये सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, जब भोर की पहली किरण धरती पर उतरती है, तब हम में से कई लोग तो गहरी नींद में होते हैं, लेकिन उसी समय कोई मछुआरा अपनी नाव लेकर उसमें बैठकर विशाल नदी या अथाह समुद्र की ओर निकल पड़ता है, जबकि उसे नहीं पता कि आज उसका जाल भरा होगा या खाली। लेकिन उसे इतना विश्वास जरूर होता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रोताओं, आज हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज है 10 जुलाई और आज का दिन समर्पित है उन मत्स्य पालकों को जो मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, ये दिवस डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर के एच अली कुन्ही की वैज्ञानिक उपलब्धियों की याद में मनाया जाता है। उन्होंने 10 जुलाई 1957 को पहली बार कार्प मछलियों में प्रेरित प्रजनन तकनीक की सफलता हासिल की थी।

दोस्तों, भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक पालन और सरकार की कई योजनाओं ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है। श्रोताओं, हमारे मत्स्य पालन

बालक जो हमारे अनकहे नायक हैं, जिनके श्रम से लाखों परिवारों की आजीविका चलती है, जिनकी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और जिनका जीवन जल से शुरू होकर जल पर ही टिका होता है।

श्रोताओं, एक मत्स्य पालक सुबह की पहली किरण जो धरती को छू भी नहीं पाती, किसी नदी के किनारे, किसी झील के तट पर या अथाह समुद्र के बीच एक मछुआरा अपनी नाव लेकर निकल पड़ता है। उसकी आंखों में सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता लहरों से होकर गुजरता है। लहरों से जो रोज टकराता है, वही घर घर खुशियों का दीप जलाता है। उसके पसीने की हर बूंद कहती है, मेहनत ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्रोताओं, मत्स्य पालन केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच विश्वास की सुंदर संबंध है। ये हमें सिखाता है कि जितना लें उतना लौटाना भी सीखें। नदियां, झीलें और समुद्र केवल जलराशि नहीं, बल्कि जीवन का अमूल्य स्रोत हैं।

0: साय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

नाव छोटी सही मगर हौसला बड़ा होता है। समंदर से लड़ने वाला कभी डरा नहीं होता। जो दूसरों की थाली में खुशियां परोसता है वो अक्सर अपने दर्द किसी से कहा नहीं करता। दोस्तों, आइए एक पल के लिए उस माँ की कल्पना करें जो किनारे पर खड़ी अपने बेटे या पति की नाव का इंतजार करती है। उसकी आंखों में प्रार्थना होती है। नाव मछलियों से भरी हो या ना हो, लेकिन मेरा अपना सकुशल लौट आए। यही प्रतीक्षा, यही प्रेम और यही संघर्ष मत्स्य पालकों के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।

श्रोताओं, आज भारत मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक मत्स्य पालन और मेहनतकश मत्स्य पालकों ने इस क्षेत्र को नई पहचान दी है, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हम जल को प्रदूषित ना करें, जलीय जीवों की रक्षा करें और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें। श्रोताओं, विश्व मत्स्य पालन दिवस हमें ये संदेश देता है कि जल का सम्मान करें, जलाशयों को स्वच्छ रखें, मत्स्य पालकों के परिश्रम को सम्मान दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए जलीय संसाधनों का संरक्षण करें। श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जल की हर मान करेंगे, नदियों, तालाबों और झीलों को प्रदूषण से बचाएंगे, प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग अपनाएंगे और उन मेहनतकश हाथों को कभी नहीं भूलेंगे जो हर दिन हमारे जीवन में पोषण, समृद्धि और उम्मीद लेकर आते हैं।

श्रोताओं, मत्स्य दिवस मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना, जलीय सुरक्षा को मजबूत करना और नीली क्रांति के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना, ये उद्देश्य हैं हमारे आज के यानी मत्स्य पालन दिवस को मनाने के। श्रोताओं, विश्व मत्स्य पालन दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक संकल्प है। जल संरक्षण का, पर्यावरण सुरक्षा का और उन लाखों मत्स्य पालकों के सम्मान का जिनकी मेहनत भारत की प्रगति में मौन योगदान है। तो आइए आज हम प्रण लें कि जलाशयों को स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक और कचरे को नदियों और तालाबों में नहीं फेंकेंगे, जलीय जीवों की रक्षा करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलित विकास को अपनाएंगे। लहरों का संदेश है, चलते रहो, संघर्षों में भी मुस्कुराते रहो, जल बचाओ, जीवन बचाओ, प्रकृति से अपना नाता निभाओ। सलाम उन हाथों को जो जाल नहीं उम्मीदें बुनते हैं, सलाम उन नावों को जो केवल मछलियां नहीं परिवारों की खुशियां लेकर लौटते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस की। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम यही कहेंगे कि जल बचेगा तो जीवन बचेगा, जीवन बचेगा तो भविष्य सजेगा। मछुआरों की मेहनत का मान करें, प्रकृति का मिलकर सम्मान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ विश्व मत्स्य पालन दिवस पर आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं चंद बातों के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश को संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी पूनम कुलश्रेष्ठ को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, मुगले आजम फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों के स्वर में। शकील बदायूनी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। कार्यक्रम में ये अब सुनते हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत अदनान सामी के स्वर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में वीर जारा फिल्म से ये कव्वाली आपने सुनी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की स्वर में, जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। श्रोताओं, इन कव्वालियों के साथ ही कार्यक्रम महफिल कव्वाली यही संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा, 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, एक बार फिर से रुख करते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं आशिकी फिल्म से अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू के स्वर में, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, जख्म फिल्म से ये गीत आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था M.M. करीम ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का गीत कुमार सानू की आवाज में, दीवाना फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में दीवाना फिल्म से ये गीत आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब आप सुनेंगे हमारी इसी सभा में रात्रि 10 बजे कार्यक्रम रजनी गंधा में, तो सुनना मत भूलिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के

0: इस स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये प्राकृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और

0: राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे

0: मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his history.

0: 2-6-4. Meanwhile, another men's single semi-final is underway between world number one and defending champion Jannik Sinner of Italy and seven-time Wimbledon champion Novak Djokovic of Serbia. In women's one-off test cricket match, India were 257 for 6 in the first innings against England at the iconic Lord's Cricket Ground when reports last came in. Earlier, England won the toss and opted to field. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on the final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad al-Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves coverage deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हमनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैरमकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हमनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करने की गरज से शिमाली रेलवे के 680 रूट किलोमीटर्स पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया, जो न्यूजीलैंड के उनके दो रोजा तारीखी दौरे का आगाज है। उनका यह दौरा तकरीबन चार दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। यह उनके तीन मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोशो खरोश से भरा हुआ था, क्योंकि लोग उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी और वंदे मातरम की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिल-ए-दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्रयाजमों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राब्तों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर मुआन पुई साई वी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात में नई रफ्तार फराहम करेगा। उन्होंने ये कहते हुए इस साल अप्रैल में दस्तखत किए गए भारत न्यूजीलैंड आजाद तिजारती माहदे को भी उजागर किया कि ये तिजारत और कॉमर्स, समंदरी सिक्योरिटी, आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती, सियाहती और इंसदादी दहशतगर्दी के मामलों में

0: दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेहत इको निजाम में से एक बनकर उभरा है, जिसमें तकरीबन 94 करोड़ की तादाद में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वजह किए गए और 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए गए हैं। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ABDM के तहत एक शानदार डिजिटल सेहत देखभाल का बुनियादी ढांचा वजह किया गया है और अगले मरहले में मुल्क भर में इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने और इस्तेफादा करने पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कौमी पैदावारियत काउंसिल NPC सनअत और अंदरूनी तिजारत के फरोग का महकमा और कॉमर्स के महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि जायजा मीटिंग के दौरान बैन इदारा जाति तआवुन को बेहतर बनाने, इदारा जाति सलाहियतों को फरोग देने और पैदावारियत और खिदमात की फराहमी के लिए बेहतरीन तरीकेकार अपनाने पर तवज्जो दी गई। वजीर मौसूफ ने उन इकदामात का भी जायजा लिया जिनका मकसद ज्यादा मरबूत, मौसर और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग इंतजामी निजाम कायम करना है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जिली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात हमारे नामा निगार से।
1: IMD के मुताबिक 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, मगरबी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी भारत के बाज इलाकों में गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज झक्कड़ों के साथ बारिश की भी पेशगोई की है। इधर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज दिन भर अब्र आलूद मौसम के साथ ज्यादा नमी का एहसास बरकरार रहा। नई दिल्ली से सौम्या शरण और ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत आज यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के जरिए चीन में दाखिल हो गया। तमाम जरूरी इमिग्रेशन और सरहदी दस्तावेजी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद भारत तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP ने यात्रियों के जत्थे को सरहद पर तैनात चीनी इंतजामिया की सरपरस्ती में दे दिया। इस जत्थे में कुल 52 मेंबरान हैं, जिनमें एक तिब्बी कारकुन और 3 खाना पकाने से मुंसलिक मेंबरान समेत 48 यात्री शामिल हैं। भारत के जर मुबादला के जखायर में 30 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिजर्व बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक इन जखायर के सबसे बड़े उनसुर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए हैं। सोने के जखायर में तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ, जो 105 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज बहुत सी उजरदारियों की समाअत करेगी, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर में अतियात की मुबैना हेराफेरी के मामले में एक शफाफ और मुकर्रा वक्ती तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी से मुतालिक गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमान में से 3 को एक रोजा पुलिस रिमांड में दे दिया था। एक मकामी अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को तमाम 8 मुलजमान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। पिछले महीने की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मौसूल होने वाले अतियात में हेराफेरी के इल्जाम के बाद मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त पर एक SIT की तश्कील की थी। आज BJP ने बिहार में बांकीपुर असेंबली हलके के जिमनी इंतखाब के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम का अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में दातिया असेंबली हलके के जिमनी इंतखाबात के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग होगी। भारतीय सहेली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाकई कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन हाउसेज ने शिरकत की ताकि

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम रजनी गंधा, जिसमें आप भेजते हैं अपने फरमाइशी खत और हम पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं, आपके पत्र हमें मिल चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं पत्रों का सिलसिला और सुनवाते हैं आपके फरमाइशी गाने। श्रोताओं, ये पत्र हमें लिखा है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, रवि कांत और नामदेव, पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा का। श्रोताओं, एक और खत हमें लिखा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। एक और पत्र इसी गीत के लिए हमें लिखा है इंदिरा बिहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वली उल्लाह नूरजहां, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, बिहार कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर ने। तो श्रोताओं, आप सभी ने फरमाइश की है पहली फिल्म के गीत की, जिसमें आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गीत गुलजार का है, संगीत MM करीम का। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना पहेली फिल्म से। और आइए कार्यक्रम में और जो खत हैं उन्हें हम शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, ये पत्र हमें लिखा है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना उत्तर प्रदेश से। और आपने हमें लिखा है आपको हमारा सप्रेम नमस्कार। तो आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। और ये पत्र हमें लिखा है बैनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश कुमार उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, रवनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह ने। श्रोताओं, एक और पत्र है, इसमें ये पत्र हमें लिखा है करूला मुरादाबाद।

यूपी से मोहम्मद अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान ने। श्रोताओं, इसी गीत के लिए एक और फरमाइश हमारे पास है दौलत बाग मुरादाबाद से। जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी का। श्रोताओं, आप सभी ने फरमाइश की है यादें फिल्म के इस गीत की, जिसमें आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई की, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं यादें फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, यादें फिल्म से ये गीत आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई की आवाजों में। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम रजनी गंधा। तो श्रोताओं, आपके पत्र हमारे पास हैं, तो आइए और पत्रों को शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। ये पत्र हमें लिखा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंशा बत्ता ने। एक और पत्र है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, बांबा कुटी उफरा पाटन से प्रेमू साहू, यमुना साहू ने। श्रोताओं, एक और पत्र है जो हमें लिखा है उत्तर प्रदेश लोनी से रजा अहमद, इसरत जहां, जमाल, कमाल और माहिर और बुशरा ने। आप सभी ने फरमाइश की है यादों का मौसम फिल्म के इस गीत की, जिसमें आवाजें हैं अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडेकर की। सलाहुद्दीन परवेज की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

भीगे बाल वो भीगा बदन वो भीगी भीगी हर धड़कन वो गाल हया में डूबे हुए वो होंठ वफा से लरसे हुए वो आंखें सोई सोई सी वो सांसें खोई खोई सी कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम इस दिल से क्या नाराज हो तुम

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

श्रोताओं, यादों का मौसम फिल्म से ये गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाड़ेकर की आवाज में। सलाहुद्दीन परवेज की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, कुछ और पत्र हैं हमारे पास, जल्दी से अपने इस कार्यक्रम में हम इन्हें भी शामिल कर लेते हैं। तो श्रोताओं, ये पत्र है गांव भड़भूंजी आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवर बाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश का। एक और पत्र है जो हमें लिखा है अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस बेगाना। और श्रोताओं, ये पत्र है छत्तीसगढ़ भटपारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा का। और श्रोताओं, ये आखिरी पत्र है हमारे पास जो हमें लिखा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमनंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित का। तो श्रोताओं, ये सभी पत्र हमें लिखे हैं यलगार फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है जिसमें आवाजें उदित नारायण और सपना मुखर्जी की है। सुदर्शन फाकिर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है चन्नी सिंह ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं यलगार फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में यलगार फिल्म से ये गीत आपने सुना उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाजों में। चन्नी सिंह के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे थे सुदर्शन फाकिर ने। श्रोताओं, आपके बहुत से प्यारे प्यारे पत्र हमें मिलते हैं इस कार्यक्रम के जरिए और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी फरमाइशें हम पूरी करें और आपकी फरमाइश का हर गीत आपको सुनवाएं। तो आप अपने फरमाइशी पत्र हमें यूं ही लिखते रहिए और हम आपको सुनवाते रहेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा में आपके फरमाइशी गीत। तो इन गीतों के साथ ही कार्यक्रम रजनीगंधा को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं रमेश तागड़े से वायलिन वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग बिहाग। तो आइए सुनते हैं रमेश तागड़े से राग बिहाग में वायलिन वादन।

0: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रमेश तागड़े से वायलिन वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग बिहाग। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र सुनिए समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
3: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
4: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
3: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
2: इससे

0: पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla.

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।